नमस्कार, FM बी 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमय चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 8:55 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ प्रारंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 8:57 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी ही देर बाद 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान। सुबह 9:20 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 9:45 पर आप सुनेंगे कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सुबह 10 हम आपको सुनवाएंगे गाने पुराने जमाने के। 10:30 आप सुनेंगे गाने नए तराने नए। 11 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। शाम 5 होगा कार्यक्रम युववाणी। 5:30 आप सुनेंगे बालवाड़ी कार्यक्रम। 6:05 पर आप लुत्फ उठा पाएंगे फिल्म संगीत का। छह बजकर 20 पर आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम। 7 होगा खेती बाड़ी। 7:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8 होगा लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। 9 आप सुन पाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। ये थे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9 रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया, कहा राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: तिरंगा हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानी है, हमारे वीर जवानों की शहादत की निशानी है। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है।

0: साल 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। इधर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में आज राज्य स्तरीय तिरंगा रैली निकाली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन होगा। ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचेगी। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस, आर्मी के जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिक भाग लेंगे। समाचार कक्ष से डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि अरुंधति चौधरी, यशवीर सिंह, राहुल शर्मा, मोना अग्रवाल और संध्या विश्नोई राजस्थान के गौरव हैं। इनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री कल जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में कॉमनवेल्थ 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयपुर में बन रहे महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय से प्रदेश में खेलों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
2: खेल के क्षेत्र में जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय खेल शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का केंद्र बनेगा। अब तक 3,540 खिलाड़ियों को लगभग 52 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सहायता के रूप में दी जा चुकी है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्हें सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता मिले। इस नीति के तहत हमारी सरकार द्वारा 186 खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।
1: आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने और उनके परंपराओं के संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आदिवासी दिवस को लेकर वहां लोगों में उत्साह का माहौल है।
3: ढोल, कुंडी, शहनाई, विभिन्न वाद्य यंत्रों की गुंज से वागड़ अंचल चारों ओर से गुंजयमान हो चुका है। जल, जमीन, जंगल और पर्यावरण का संरक्षण देने, सिर पर पगड़ी, हाथों में तीर कमान, कमर में लटकी तलवार, पीठ पर ढाल, पैरों में घुंघरू, ढोल की थाप पर थिरकते आदिवासी बरसों पुरानी संस्कृति परंपराओं का निर्वहन करते हुए कहीं गैर नृत्य तो कहीं राणा पुंजा, भील, वीर कालीबाई, गोविंद गुरु की प्रतिमाओं पर मल्यार्पण के साथ नमन कर विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। आज भी कई जिलों में बरसात की झड़ी लगी हुई है। राजधानी जयपुर में कल रात से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। चूरू के सादुलपुर, रतनगढ़ और सरदार शहर में भी अच्छी बारिश हो रही है। यहां निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा जल निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से तीन दिन तक दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ हिस्सों में मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
4: देखिए पिछले दो दिनों से साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। 8 से 10 अगस्त के दौरान भी देखें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र हैं इनमें अभी भी कुछ इलाकों में बारिश की कमी आगामी दिनों में जारी रह सकती है।
1: जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। इस साल यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 4,80,000 से ज्यादा हो गई है। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होना है। बाड़मेर में कल एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर कुर्जा फाटे के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने चारों युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले तीनों व्यक्ति बालोतरा जिले के धोरी मन्ना इलाके के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए जजों की नियुक्ति की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। नवनियुक्त जज जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में जजों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन जयपुर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को संबोधित किया। कहा, राजस्थान के खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना परचम फहराया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात की झड़ी। आज भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के जर्मी चैनल को। सुबह के 9:10 हो गए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्य कुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। सुबह के 9:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा की आवाज़ में इस भक्ति गीत के साथ।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए अगली प्रस्तुति।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। अगली प्रस्तुति सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अगली प्रस्तुति सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

0: इसी भक्ति रचना के साथ हमारा आज का ये वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
1: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उस

0: चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, ये वो कहता है, नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम तुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी हैं जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहाँ की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं, लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: है तार टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाए। हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली

0: अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी। आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूँ, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफ़र को भी अवॉइड कर सकती हूँ। तो वी गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज़ कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पर काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: You had been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आप सुन रहे थे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम of Department of Justice from Ministry of Law and Justice. यही आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म ब्रह्मचारी के इस गीत से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अगला गीत आपके लिए है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, गाने पुराने जमाने के। अगला गीत आपके लिए फिल्म नमक हलाल से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत को संगीत से सजाया है बप्पी लाहिड़ी ने और इस गीत को लिखा है अनजान ने।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को और आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के। अगला गीत आपके लिए फिल्म तराना से, आवाजें उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की है। गीत को लिखा है तिलक राज थापर ने और संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

अगली प्रस्तुति आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के, FM बैंड 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे गाने नए, तराने नए, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद।

गाने नए तराने नए इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म जैकपॉट का ये गीत।

अगला गीत आपके लिए फिल्म गब्बर इज बैक से, आवाजें अरिजीत सिंह, पलक मुच्छल और चिरंतन भट्ट की है।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गाने नए जमाने के इस प्रोग्राम में अगला गीत आपके लिए फिल्म चमेली से आवाज सुनिधि चौहान की है।

आप सुन रहे हैं गाने नए ज़माने के, और अब जो अगला गीत आपके लिए है, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में फिल्म कॉकटेल से।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हमशिका और अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इनका साथ दिया है जॉय ने। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

0: इसी गाने के साथ गाने नए तराने नए कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचानों से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून 3 महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।

देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी रेल घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि काकोरी रेल घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ सशस्त्र क्रांति को नई गति प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी।

0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के
1: अभ्यास संशोधन में कर रहा हूं, वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 वर्ष में आया है, वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे, उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमि। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में, जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा, कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास ये छोटा गांव है। अश्विन शुद्ध अष्टमी के, दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत, वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंदमठ कादंबरी में हुआ। आनंदमठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंदमठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक बार, उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर

ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मूकपटों में वंदे मातम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातम। बंगाली फिल्म थी। सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी। और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रेजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं, वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कानेवे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कान्हे 1909 फिल्म से।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबुज द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में, और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद योग।

पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभु अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। निर्देशक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज्यादा है, उसमें जो चार पांच संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जनगणमन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म। हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी, उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग

ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रणगीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबलदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मौलिक, इनकी धुन। पंकज मौलिक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन, वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मौलिक द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्णाराव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष, ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीतकार है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जीएम दुरानी ने, लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है, संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त, जीएम दुरानी, संगीतकार ज्ञान दत्त।

संगीत रचना है तिमिरवरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिरवरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

यार रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट यह संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मोदगल ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में यह फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद गुप्ता। हेमेंद गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर और आर्त स्वरों से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बारी पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है अनंत मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
1: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने, संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सौतन से।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत यादें।

0: आ रही हैं विविध भारती पर। सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

महेश किशोर की आवाज थी, सावन कुमार की रचना आपने सुनी, बिपिन सचदेवा लता मंगेशकर के युगल फिल्म में। ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजिन की सहेली इस फिल्म का दोगाना था, मोहम्मद रफी, सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM बिंड 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। दिन का 1 बज रहा है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे राजस्थान, क्षमा कीजिए, हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये इस वर्ष अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अल्बर्ट हॉल से राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह अभियान आज जनव्यापी अभियान का रूप ले चुका है।
1: 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही ध्वज नहीं है, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए यह ठीक नहीं है, यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
2: आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारें। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जनभागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
0: ये रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर रामनिवास बाग, निकास गेट से सांगानेरी गेट और जौहरी बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित करीब 10,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। जालौर में तिरंगा रैली के साथ जन जागृति अभियान शुरू हो गया है। झुंझुनू, पाली और अलवर में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान भी किया गया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तिरंगा यात्रा के साथ ही देश की रक्षा और आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम आदिवासी पारंपरिक दायियों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा रखी गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में तेज बारिश का

0: येलो अलर्ट जारी किया है। बरसात का ये दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर बना हुआ है। सबसे ज्यादा 7 सेंटीमीटर पानी खैरथल तिजारा के किशनगढ़ बास में बरसा। अलवर, भीलवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, सवाईमाधोपुर और सीकर जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के 4 आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला है। जिले के अनूप शहर, कलाना, भूमपुरा और मक्कासर के पीएचसी प्रमाणित होने के बाद क्वालिटी सर्टिफाइड चिकित्सा संस्थानों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

तो सचमुच नाच उठता है सावन में। और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इतलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं, कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात

करते हैं। आप जरूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइए, और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा, तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है, और हर पल अपनी पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।

कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम, कुछ ना कहेंगे हम।

मला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोताओं। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है और शैलेंद्र की रचना थी वो गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात करी है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में जी डरे तन मन पे पानी गिरे और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का की उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम झिम फुहारे फुहारे कजरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोख से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस के विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना लयबद्ध होना ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है, ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है तो आप हमें जरूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

छलिया फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती। उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है। इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई, तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग, और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब ड शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियां हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हो तो आप साझा कर सकते हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना, और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में छोटा एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नज़रिए से, तो प्रदेश है। यहाँ पर हैं अलग अलग, तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियाँ नज़र आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे

पूछा लैंड ऑफ बटरफ्लाईज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा फिल्म का गीत आपने सुना, रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओ जो आपको अच्छी लगती है? क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओ जो जोंगो क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है। तो नैना क्यों बरसे? बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोलकर रात में रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आवाज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शीला आवाज पर फिल्माया गया। श्रोताओं, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओं, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नजर नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाएं तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नजर आता है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो, हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा। अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है। तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताज़ा कर सकते हैं, गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है श्रोताओं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मन भावन नृत्य, तमाम सारी बातें जो सावन की।

इस गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया। श्रोताओं, फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैं सुन रहा हूँ, दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोताओ। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इस जगहों की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलग है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर में लिपटी ये धरती नीले आसमान को ओढ़े, ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियां ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से। और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहां का नजारा, जी हाँ पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहां इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर।

छलकी रे कोयल की, कजरी तान पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए, और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आप पहचान रहे हैं श्रोताओं, और संगीतकार।

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोता, वो रावण हत्था है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं है, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

75 किलोमीटर दूरी पर पंचमढ़ी है। वहाँ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन ये है और वहाँ पर बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारे झरने निकलते हैं। ये समय यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। जी हाँ, पंचमढ़ी तो बड़ी सुंदर जगह है। और आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

दोस्तों नमस्कार। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपनी असुरक्षा, जलन या व्यक्तिगत कुंठा के कारण दूसरों से नफरत करने लगते हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि नफरत का बोझ ढोने से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होते हैं। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेकर हमारे मन में नफरत की भावना आ ही जाती है। नफरत को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि क्षमा और प्रेम वो भाव हैं जिनसे मन को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मन में नफरत या द्वेष की भावना रखना अपने कीमती समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली करें और उन चीजों से भरें जो मायने रखती हैं।

दोस्तों, अगर हम नफरत की भावना से खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी थोड़े से बदलाव लाने होंगे। क्षमा या माफ करने को अपनाना होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि यही बदले की भावना से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो नफरत से बच सकते हैं। दूसरों से तुलना और खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकने की बजाय अपनी भलाई पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। नफरत

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

चलो माना कि कोई और हमसे नफरत करने लगे, तो उसकी नफरत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शांत रहें और कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाएं और उनके नकारात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें। विवाद से नफरत को और हवा मिलती है। कभी यदि कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। खुद को दूसरों के मुताबिक बदलने की बजाय अपने मूल्यों पर टिके रहें। एक परिपक्व मानसिकता ही सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता मानी जाती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि देश की ताकत मानना चाहिए। सभी देशवासियों को आपसी मतभेद और नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। नफरत या प्रेम, दोनों ही चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं। हम भी अपने बच्चों को सभी धर्मों का और सभी इंसानों का

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा,
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर B.R. आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
3: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
4: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज

0: एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
2: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
3: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई।

0: मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की

रवि ने इस गीत को सुरबद्ध किया। सह लुधियानवी की रचना थी महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गीत है। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न शबाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं।

0: पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफी का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत।

0: आ रही हैं विविध भारती पर।
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: श्रीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूं ने के बोलों को सुरों में ढाला, नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यही संपन्न होता है।

जगत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदा नाका इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहानी। इन्होंने लिखा है आजाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, सहल ध्यानवी के बोल, खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जीतेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोताओं रहता है हमें इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

नाटी तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी।

0: आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: आदर, आदर, नहीं, आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते
3: हैं? जज की आवाज,
4: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
5: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
5: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
5: लेकिन क्या ये सच है?
4: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया, सच को छिपाया।
5: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
4: नहीं,
5: बोलो।
4: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था।
6: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहां है कामनी?
7: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो, लेकिन जो है वही मांगता है वो।
6: क्या मतलब?
7: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
6: ये बात और कोई भी जानता है?
7: नहीं।
6: पाठक भी नहीं?
7: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
4: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है, और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं उदारता का ढोंग रचता हूं, पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया, और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कहानी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
8: ओ, ये कौन हमारा इस समय कौन है?
9: भैया मैं यानी केशव ठाकर।
8: क्या है?
9: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
8: ओ हाँ।
9: नमस्कार कामनी जी।
7: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
9: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
4: तुम जरा जल्दी आ गए।
9: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की कापी। ठीक है तो मैं जाऊं।
7: सिक्रेट कीजिए, जल्दी भी क्या है?
4: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं।
9: नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
7: बैठिए बैठिए, क्यों जल्दी है?
4: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
9: जरूरी बात? अति सुंदर अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
4: हमारी निजी बातें थी।
9: निजी बात? ओ समझा, आप लोग शायद मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
4: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
7: क्या हुआ केशव जी?
9: जी
7: आप नाटक पढ़िए ना, देखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
9: जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
4: क्या? तुम जानते हो?
9: जरूर जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
7: वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही
9: होंगे। अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
7: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
9: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
7: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
9: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और।
4: आत्मकथा लिख लाए हो?
9: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
4: ये क्या झमेला है?
9: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
4: क्या कहा?
9: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
4: तो तुम जानते हो?
7: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
9: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए, 5-6 साल पहले हम बम्बई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, इस पछले में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
7: हाँ हाँ पढ़िए ना।
4: नहीं पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
9: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
4: अच्छा?
9: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
4: उम्र क्या है?
7: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
9: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
4: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
9: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
7: और क्या?
9: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका आपका रूप ऐसा है कि
4: क्या
9: के कि शेखर इन पर जान दे।

0: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
1: जी गोरा।
0: रंग गोरा है,
1: गोरा।
0: आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा, वो आदमी कैसा है?
1: अजी बहुत चाला।
2: उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ।
0: देखो केशो, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
2: अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
0: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठाकर लिखवाना पड़ेगा।
2: अच्छी बात है।
0: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था। पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी, बताइए शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
4: मैं जानती हूं, लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में, दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
5: हाँ भाभी।
4: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
5: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
4: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदला?
5: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
4: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
5: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
4: वो अफ्रीका से लौट आया है?
5: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो, इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
4: हाय, कैसा है?
5: गोरा, भूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
4: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
5: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में
4: अरे
5: नहीं आता।
4: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
5: भाभी आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एक-एक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
4: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
5: अभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
4: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
3: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
6: हाँ जानता, लेकिन ओह, ये अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
7: ये आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में छूट दिया। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक की आग में जल उठे।
6: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
5: पाठक, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
6: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
5: नहीं, उसका एक दोस्त है।
6: कैसे परेशान कर रहा है?
5: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
6: मतलब
5: वो जब भी चाहे किसी बहाने मैं उससे मिलूं।
6: और तुम ये सब ना मानो
5: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
6: उस आदमी का नाम क्या है?
5: शेखर खोसला।
6: शेखर खोसला?
5: हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
6: कामनी, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
5: क्यों?
6: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
5: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, चटपट स्वार्थी नीच कंगाल।
6: एक शब्द भी और कहा तो गला घोटूंगा।
5: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
6: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी। ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुतबुत खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला

0: शेखर खोसला को आप जानते हैं, केशव ठाकर आप चुप क्यों हैं? बोलिए शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
1: ये आवाज कामनी को सजा हो गई। शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्तों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
2: केशव जी,
1: कहले जी,
2: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
1: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
2: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप, अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है।
1: और क्या?
2: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
1: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
2: बड़े गहरे हैं कवि जी,
1: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में, शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी। रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था। और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
2: सुनिए कवि जी, कल शो है ना?
1: हाँ।
2: कल पाठक ने सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है। क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
1: जी।
2: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
1: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
2: कवि जी।
1: जी जी।
2: आप आ गए?
1: मैं बिल्कुल आ गया।
3: ये पहली पंक्ति के तो टिकट मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
1: टिकट किस लिए?
3: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
1: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
3: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखूं मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखूं आपके उस खूबसूरत चित्चोर को।
1: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
2: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
1: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा हुई। आज जेल में मैं उसे देखने गया।

0: मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
1: शेखर खोसला
0: चेयर की कोठरी।
1: हाँ पूरा सच।
0: बकली
1: सच के सिवा कुछ नहीं।
0: शेखर खोसला की बातें कर रहे हैं।
1: शेखर खोसला झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ बताओ इस मुलसिमा कामी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना। रात को गर्माई मिली है जिसे तुम गायन प्रेमी चचो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए उस कामी देसाई को तुम नहीं जानते। पर शेखर मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्नियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेत्री हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो खमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों शिखर? जवाब तो मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे

0: किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं।

0: कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
1: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
0: एक किसी और जगह से आया।
1: हाँ, बिल्कुल। ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है थे इरादर, और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी। लेकिन उसकी जो ये ठीक क्या कहते हैं अंडरलाइन कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही, हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
0: दिखावा क्या है,
1: ये दिखावा क्या है ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है। और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है, इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है, अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने कटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया उसमें सारे कैरेक्टर्स। वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
0: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
1: आपको मालूम है वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ा थे मेरा कि सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियां मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है ये चौल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
0: बहुत सुंदर बात, हाँ। वाह,
1: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
0: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है,
1: हाँ,
0: वो भी बताइए।
1: कौन सी?
0: वो डायलॉग सुधरवाने वाली
1: नहीं, कहीं वो सुन ले तो नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम। लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि गुलजार साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे देखो 2.50 रुपए हो गए हैं अभी तक, वो कुछ 58 चार्ज होता था, क्या अब
0: एक नहीं? बार की सलाह पे 58 यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
1: हाँ, तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
0: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए?
1: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा। लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला,
0: शरारती भी
1: और दूसरे पे हावी होने वाला, हाँ। और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना? तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट है, मजा आ गया मजा आ गया, कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना? नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली, एंड आई सेड नहीं आई एम सीरियस एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम? एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम वैसे दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ? तो फिर आई डोंट नो आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सुंदर रोल्स।
0: और वहाँ पर फिर दीप्ति चली आई,
1: दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दू, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, और आप क्या काकू बन के रहती है? तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारी प्यारा से मासूम।
0: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं, अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं, और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें जो असहजता है तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है कमाल कमाल,
1: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने, वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल, इवन आई लव दिस वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली माय एंटायर करियर, इफ यू आस्क मी नेम 5 सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, That's one of them.
0: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
1: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, इट डिपेंड ऑन द फिल्म। जैसा कि दिशा का पूछो तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
0: ओ गॉड
1: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही, थोड़ा थोड़ा
0: प्रोसेस
1: नहीं,
0: था।
1: नहीं। लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया, फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर, और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
0: वाह ये भी बात है। और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में और वो रस्सा कशी का खेल हो रहा था, वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना? तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती है दिमाग में
1: इसमें वो पटकथा
0: का हिस्सा बनती
1: जाती है। अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन? तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इससे और क्या चाहिए? अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुनझुन झुनझुन झुन, फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुंझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल

0: फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया वह ठाक करके
1: क्या बढ़िया
0: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
1: वाह वाह,
0: और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे
1: वो
0: रोंगटे खड़े
1: एहसास
0: हो
1: हो
0: गए।
1: रहा है।
0: इट इज सो ब्यूटिफुल, इट वाज सो ब्यूटिफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
1: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का,
0: जी
1: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी। मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चॉल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चॉल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया,
0: हाँ,
1: और वो मुंबई में नहीं मिली।
0: नहीं क्या मजे की बात है ना, बंबई की खास चॉल पुणे में। दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड, फिल्मी एवरीथिंग इज फेक। तो ये भी फेक ही है, चॉल भी फेक है हमारी, लेकिन चॉल फेक नहीं है, पोजिशनिंग फेक है।
1: पोजिशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
0: नहीं ना, बंबई में कितनी चॉल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते। मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम। तो कई चॉल तो होती थी, वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहाँ सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा। कई चॉले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए। और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए। फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय, कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पूना में देखो ना, पूना में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं नहीं बम्बई की चौल पूना में क्यों। तो कहता अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पूना में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पूना में है। मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पूना गए और पूना में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की, हाँ, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुक के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा, चौल के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेज और कटखरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से
1: बैलुस्टेज।
0: और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुम के चौल कथा फिल्म में बंबई की चौल बन के हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
0: कौन सा,
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम रखा था।
0: इतना प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया कौन आया। अब अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
0: जी। कौन आया?

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म हाँ। है ये और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वॉज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग ही वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परूलकर पुणे में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात है।
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे मैं देखने गई उनके गाँव में,
0: नायगांव
1: गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिल गए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था धूप में काम कर करके, सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंक गया, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआ दिखा दो सहिताई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआ दिखाया, बाकायदा कुआ, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआ खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते देखे सोमा क्या, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव

0: And tribals have a very unique common factor. They're all very innocent, they're all very believing, and they're all very scared, insecure, and they're all very helpful and very loving. तो ये सब जो है तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को मंतरबन.
1: जी
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी. बेशक अपने में अलग अलग हो, लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाँक थी उसमें.
1: बिल्कुल
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था. तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें. फिर
1: गजब
0: हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी
1: अरे वाह
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक. दोनों इतने मजे के, तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए. और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया. और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे. नहीं, सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस. अरे चुप कर यार, ये सही भाषा थोड़ी है ना.
1: गजब गजब गजब
0: इतना सीरियसली वो लेते थे. अरे नहीं
1: जी
0: नहीं वो गलत बोला, गलत बोला. मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोल. तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब.
1: जी
0: हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली,
1: जी
0: बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट. दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन.
1: जी
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ, और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में, या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में, या स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने.
1: जी
0: और द फिल्म वॉज यूज फॉर वर्कशॉप्स
1: जी
0: अलॉट.
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात बोले.

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताइए।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो आई एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस कर। सो देर वॉज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। सो आई सेड आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी है। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी, बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ।
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या? ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अमुक अमुक साल, हो मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। ही सेड येस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन, ही सेड आई वॉज हिज नंबर वन सपोर्टर। तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट, सो आई सेड अच्छा तो ये है वगैरह। फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई। ही सेड अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। सो आई सेड हाँ करो। ही मेड एवरी थिंग पॉसिबल, wherever we went, we had the forest guest house to stay, we had a forest expert committee to guide us, we had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps, क्या नहीं बोलो, and permission everywhere. ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, you know, so we shot all over, fantastic, and it really went out very well.
0: क्या बात है?
1: It's sad that the film didn't, people have not seen it so much.
0: जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाएं।
1: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
0: जी। हाँ,
1: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये

0: किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
1: जी
0: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है
1: हाँ,
0: उसका।
1: मराठी में उसका नाम है सय, हाँ, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है. फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है. इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट. अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना, सुंदर
0: जी
1: सा.
0: जी
1: तो
0: जी
1: मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज
0: जी
1: नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म. हाँ, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है. तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो
0: जी
1: पैचवर्क क्विल्ट. और अब ये हिंदी में जो छप रही है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ. आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है. एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात.
0: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है। हम अपने
1: तो अपने
0: श्रोताओं से कहते हैं
1: श्रोताओं
0: कि
1: से
0: वो तय
1: पूछो
0: करेंगे
1: कि लवली
0: कि क्या नाम
1: लवली, आई'd
0: होगा।
1: लव टू हियर व्हाट दे फील. आई ट्रूली वुड,
0: जी
1: सिंसियरली. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.
0: जी
1: थैंक
0: सही
1: यू.
0: जी, एक बात कहना चाहता हूं।
1: जी
0: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे
1: हाँ
0: इंटरव्यू चाहा था।
1: हाँ
0: तब मैं बहुत नया था
1: हाँ
0: और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता
1: अभी तो
0: हूं।
1: मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है. ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है
0: जी, तो आपने
1: सुनकर.
0: कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है, आगे कभी बात करेंगे।
1: तो किए ना.
0: मुझे
1: हाँ,
0: पता नहीं
1: वादा
0: था
1: निभाया
0: कि 20 साल
1: निभाया
0: इस वादे में लग जाएंगे। मैं
1: ना.
0: बहुत खुश हूं कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की।
1: नहीं,
0: थोड़ी
1: मुझे
0: ज्यादती
1: बहुत
0: है इतने
1: अच्छा
0: सारे
1: लगा.
0: सवाल कर। बहुत बहुत
1: क्या
0: शुक्रिया।
1: क्या उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी. संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का. विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले. अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: उजाले उनकी यादों के। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

हर शाम मुस्कुराने की वजह बनती है जब बारिश दिल के जख्मों को भी नम करती है। नाराज़गी हो या दूरी सब मिट जाती है जब दिल से निकली बात रूह तक जाती है। चलो आज कुछ अच्छा सोचते हैं, बातों में नहीं एहसासों में दोस्ती ढूंढते हैं, क्योंकि जिंदगी छोटी है पर रिश्ते बहुत बड़े हैं और अपने कभी अपनेपन से जुदा नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, आज की दिनांक है 9 अगस्त और आज पूरा विश्व मनाता है इस दिन विश्व आदिवासी दिवस। दोस्तों, ये दिन दुनिया भर के आदिवासी और जनजातीय समुदायों की पहचान, अधिकारों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है। फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि अगर किसी समाज की भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक कला, वेशभूषा और रीति रिवाज धीरे धीरे गायब होने लगे तो क्या केवल एक कला खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, उसके साथ उस समाज की कहानियाँ, इतिहास, अनुभव और पहचान भी खोने लगती है। और यही वजह है कि जनजातीय कला और संस्कृति का संरक्षण भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, भारत की जनजातीय संस्कृति बेहद विविध और समृद्ध है। अलग अलग जनजातीय समुदायों की अपनी भाषाएं, लोक कथाएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, हस्तशिल्प और परंपराएं हैं। इन कलाओं में केवल सुंदरता ही नहीं होती बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन जीने की समझ भी दिखाई देती है। दोस्तों, जनजातीय लोकगीतों में प्रकृति की आवाज़ सुनाई देती है, लोक नृत्यों में सामूहिकता और उत्सव दिखाई देता है और पारंपरिक चित्रकला में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मानव जीवन से जुड़ी कहानियाँ भी दिखाई देती है। यानी जनजातीय कला सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ये ज्ञान और अनुभव की एक जीवित किताब है। बात करें अगर हम जनजातीय युवाओं की, तो फ्रेंड्स, आज का युवा तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में जी रहा है। मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक जीवन शैली ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आधुनिक बनने का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना है? बिल्कुल नहीं, आज के जनजातीय युवा अपनी संस्कृति को आधुनिक माध्यमों के साथ जोड़कर उसे नई पहचान दे सकते हैं। जैसे कि कोई युवा पारंपरिक लोकगीत को नए संगीत के साथ प्रस्तुत कर सकता है, कोई पारंपरिक चित्रकला को डिजिटल आर्ट के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा सकता है और कोई अपनी मातृभाषा में वीडियो, पॉडकास्ट या फिर सोशल मीडिया सामग्री बनाकर नई पीढ़ी को अपनी भाषा से जोड़ सकता है। यानी तकनीक संस्कृति के लिए खतरा ही नहीं बल्कि संरक्षण का एक शक्तिशाली माध्यम भी बन सकती है। और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को जानना बेहद ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों से लोक कथाएं सुनना, पारंपरिक गीतों को सीखना, अपनी भाषा को समझना और पारंपरिक कला को सीखना, ये छोटे कदम बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। और अगर कोई युवा पारंपरिक नृत्य, संगीत, चित्रकला या हस्तशिल्प जानता है तो उसे केवल अपने तक सीमित रखने के लिए बजाय दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए। और आज एक छोटा सा वीडियो भी हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए युवा अपने संस्कृति से जुड़ी जानकारी, कहानियों और कला को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, संस्कृति किसी संग्रहालय में रखी हुई पुरानी चीज़ नहीं है। संस्कृति तब जीवित रहती है जब अगली पीढ़ी उसे अपनाती है, समझती है और आगे बढ़ाती है। इसलिए जनजातीय युवाओं को केवल अपनी संस्कृति का संरक्षक ही नहीं बल्कि उसका एक नया प्रतिनिधि, रचनाकार भी बनना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं बने बल्कि परंपरा जड़ों की तरह हो और आधुनिकता नई शाखाओं की तरह, क्योंकि जड़ें मजबूत रहेंगी तभी नई शाखाएं भी मजबूती से बढ़ेंगी। और इस विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी एक संकल्प लें कि हम जनजातीय समुदायों की कला और संस्कृति का सम्मान करेंगे। हम उनकी भाषाओं, लोक कलाओं, संगीत, नृत्य और परंपराओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जनजातीय युवाओं को अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जब युवा अपनी विरासत से जुड़ता है तो संस्कृति केवल सुरक्षित ही नहीं रहती बल्कि वो एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती है। हमेशा याद रखिए कि अपने संस्कृति को जानना अपनी पहचान को जानना है। तो अब इसी के साथ आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं बेहद प्यारा गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी अगली चर्चा की, जो खास कर हमारे युवा साथियों, नए उद्यमियों और अपने बिजनेस का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में भी कभी कोई नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया है और आपने सोचा है, तो आपका आइडिया तो बेहद अच्छा है, लेकिन शुरुआत के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्या इसके बारे में भी आपने सोचा है? तो दोस्तों, अगर आपने ऐसा सोचा है तो आज की हमारी चर्चा आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की। दोस्तों, भारत में आज बहुत से युवा नौकरी तलाशने के साथ साथ नौकरी देने वाले उद्यमी बनने का सपना भी देख रहे हैं। किसी के पास टेक्नोलॉजी से जुड़ा आइडिया है, किसी के पास कृषि से जुड़ा नया समाधान, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो कोई स्वास्थ्य, पर्यावरण या फिर स्थानीय समस्याओं का नया समाधान लेकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन किसी भी स्टार्टअप के लिए केवल आइडिया होना ही पर्याप्त नहीं होता। आइडिया को जो है प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल में बदलने का, उसका परीक्षण करने और बाजार तक पहुंचाने के लिए एक शुरुआती पूंजी की जरूरत होती है, और इसी शुरुआती चरण में मदद करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS शुरू की। दोस्तों, आखिर ये सीड फंड होता क्या है? पहले हम इसे समझते हैं कि सीड फंड क्या होता है। सीड यानी बीज, जिस तरह एक छोटे से बीज से पौधा और आगे चलकर बड़ा पेड़ बन सकता है, उसी तरह किसी स्टार्टअप का छोटा सा आइडिया आगे चलकर बड़ा व्यवसाय बन सकता है। लेकिन उस आइडिया को शुरुआत में संसाधन चाहिए, और इसी शुरुआती ज़रूरत को पूरा करने के लिए सीड फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का उद्देश्य ऐसे शुरुआती चरण के स्टार्टअप को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है जिनके पास संभावनाशील बिजनेस आइडिया है, लेकिन उन्हें अपने आइडिया को विकसित और बाजार में उतारने के लिए शुरुआती सहायता की आवश्यकता होती है। अब इस योजना से किस तरह की मदद मिल सकती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस योजना के तहत स्टार्टअप को किस तरह की सहायता मिले। योजना के तहत चुने गए स्टार्टअप्स को उनके विकास के अलग अलग चरणों में सहायता मिल सकती है। जैसे कि अगर किसी स्टार्टअप को अपने आइडिया का प्रोटोटाइप तैयार करना है, तो उसका परीक्षण करना है और उसे बाजार में उतारने की तैयारी करनी है, तो इस तरह की शुरुआती जरूरतों के लिए फंडिंग का प्रावधान होता है। इसके अलावा किसी स्टार्टअप को अपने

उत्पाद को बाजार में लाना है, ग्राहकों तक पहुंचाना है या फिर व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, तो उसकी सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। इसलिए ये योजना केवल पैसा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप को आइडिया से लेकर बाजार तक पहुंचने की शुरुआती यात्रा में मदद करना है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि इस योजना के लिए स्टार्टअप इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त यानी DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होना आवश्यक है। अगर बात करें आवेदन कौन कर सकता है और इसकी पात्रता क्या है, तो योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है और स्टार्टअप की स्थापना की तारीख, उसके बिजनेस आइडिया, नवाचार और अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर पात्रता देखी जाती है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हर नया बिजनेस अपने आप इस

कि पैसा कहाँ से आए, मार्गदर्शन कौन दे और आइडिया को बाजार तक कैसे पहुँचाया जाए। तो ऐसे में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसे कार्यक्रम शुरुआती उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई नया और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है तो सिर्फ ये सोचकर नहीं रुकना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पहले अपने आइडिया को अच्छी तरह समझिए, देखिए कि वो किस समस्या का समाधान करता है, उसके संभावित ग्राहक कौन है, आपका उत्पाद या सेवा दूसरों से अलग कैसे है। फिर स्टार्टअप इंडिया की आधिकारिक जानकारी के माध्यम से आप उपलब्ध योजनाओं और पात्रताओं को समझिए और एक अच्छा आइडिया, आप याद रखिए कि शुरुआत है लेकिन उसे सफल बनाने के लिए प्लानिंग, मेहनत, टेस्टिंग, सही गाइडेंस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। अब लीजिए फिर से आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन नगमा।

0: अचानक गायब हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसे कहते हैं स्टेज फियर, यानी मंच पर बोलने का डर। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही आसान और प्रभावी तरीकों की, जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान अपने आत्मविश्वास को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्टेज फियर होता क्यों है। दोस्तों, जब हमें लगता है कि बहुत सारे लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, तो हम नर्वस महसूस कर सकते हैं। हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं कि अगर हम भूल गए तो, अगर लोग हमारे ऊपर हंसने लगे तो, अगर मेरी आवाज़ कांपने लगी तो। लेकिन यही सब सवाल हमारे अंदर आते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि नर्वस होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। अक्सर इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उस काम को लेकर थोड़े सीरियस हैं। इसके लिए आपका पहला कदम है अपनी नर्वसनेस को स्वीकार करना, उससे डरना नहीं। अपने आप से कहिए कि हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो अच्छी तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस का सबसे मजबूत आधार होता है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। अगर आपको पता है कि आपको किस विषय पर बोलना है, तो सबसे पहले उस विषय को अच्छी तरह समझिए। पूरा भाषण आपको शब्दशः याद करने की बजाय उसके मुख्य पॉइंट्स याद कीजिए। मान लीजिए आपको पर्यावरण संरक्षण पर बोलना है, तो आप सिर्फ चार बातें याद रख सकते हैं कि उसकी समस्या क्या है, उसके कारण क्या है, समाधान, और फिर उसमें हमारा योगदान। अब अगर कोई एक लाइन भूल भी गए तो आपका पूरा भाषण नहीं रुकेगा। दूसरी बात, आप आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अपने कमरे में खड़े हो जाइए और ऐसे बोलिए जैसे आपके सामने जो है पूरा ऑडियंस बैठा हो। और आईने के सामने बोलना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही प्रैक्टिस आपको अपनी आवाज़, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज समझने में मदद करेगी। आप चाहें तो अपने भाषण की प्रैक्टिस मोबाइल में रिकॉर्ड करके भी सुन सकते हैं। फिर देखिए कहाँ आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं और कहाँ आवाज़ बहुत धीमी हो रही है, कहाँ पॉज की ज़रूरत है। धीरे धीरे आपको खुद फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों, शुरुआत की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें। भाषण का सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर शुरुआत ही होती है, इसलिए अपनी ओपनिंग लाइन अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जैसे कि, नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जो हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा है। अब आपकी पहली दो तीन लाइन्स कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाती है, तो आगे बोलना काफ़ी आसान सा हो जाता है। और हाँ दोस्तों, बोलते वक्त अपने सांस पर ध्यान रखें। मंच पर जाने से पहले अगर आपको घबराहट महसूस हो रही है, तो कुछ पल रुक कर धीरे धीरे सामान्य सांस लें और जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। मंच पर जो है पहुंचकर एक छोटा सा पोज लेना बिल्कुल ठीक है। याद रखिए कि पोज आपकी कमजोरी नहीं है। अच्छा स्पीकर भी अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए बीच बीच में पोज लेता रहता है, और ऑडियंस को दुश्मन नहीं बल्कि अपना आप साथी ही समझना है। कई बार हमें लगता है कि ऑडियंस हमारी गलतियां पकड़ने के लिए बैठी है, लेकिन वास्तव में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑडियंस के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि स्पीकर अच्छा बोले। इसलिए ये सोचने के बजाय कि सब लोग हमें जज कर रहे हैं, अपने मन में कहिए कि मैं इन लोगों के साथ अपनी जानकारी शेयर करने आया हूँ। और ये छोटा सा माइंडसेट चेंज जो है बहुत फर्क डाल सकता है दोस्तों। इसके बारे में हम और भी चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो दोस्तों, अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी आवाज़ को आत्मविश्वास के साथ दुनिया तक पहुंचाते रहिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:30 हुए हैं। अब छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालवाड़ी।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपनी मंजू दीदी का जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, कैसे हैं आप? भाई आज स्कूल की छुट्टी है ना, तो बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, है ना बच्चों? भाई मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो है भाई मैं कहूँगी कि हमारे भी स्कूल की छुट्टी है ना, तो बिल्कुल सही है। तो हम लोग आज मौज मस्ती करेंगे, खूब अच्छी अच्छी बातचीत भी करेंगे और घर में सभी के साथ मिलकर बहुत मौज मस्ती करेंगे, है ना बच्चों? लेकिन आपको पता है हमारा जो बालवाड़ी कार्यक्रम है आज ही के दिन आता है, हम लोग आज ही के दिन ये प्रोग्राम सुनते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये बालवाड़ी कार्यक्रम। बच्चों एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है और एक माँ होती है जो हमारा पालन पोषण करती है ना, और हमें अपनी गोद में रखती है, वो है धरती माँ, है ना बच्चों? तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारी धरती माँ की जो है कुछ हालत अभी यूं कहें कि चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है ना, वनों की कटाई हो रही है, तो इस चीज से हम सभी बहुत ही परेशान है। हमें चाहिए बच्चों कि हम हमारी धरती माँ की सुरक्षा करें। तो ये हम भी जानते हैं बच्चों कि हमारा जो भविष्य है ना वो प्राकृतिक जगत पर निर्भर करता है, लेकिन हम एक वैश्विक आपातकाल का सामना कर रहे हैं और वनों की कटाई, शोषण, शहरीकरण, वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण हम हरित क्षेत्र, जीव जंतु और वनस्पतियों को खो रहे हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, जहां भी हम देखते हैं वनों की कटाई हो रही है, हरे हरे पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जबकि हमारी सरकार कई योजनाएं चला रही है और हमें जागरूक कर रही है कि पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए।

रहेगा और ट्रेन यात्रा को प्राथमिकता दें। जहाँ तक हो सके आप सार्वजनिक जो भी ये है ना यातायात के साधन उनका उपयोग करना चाहिए हमें। और इसके अलावा देखिए बच्चों, पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने और उसके अलावा पानी बचाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और बिजली की बचत करने और कचरे को रिसाइकलिंग करने जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। हमें हमारे दैनिक जीवन में कई छोटे-मोटे बदलाव लाकर

बच्चों अभी सुना हमने एक बहुत ही प्यारा सा गीत। गीत के साथ ही आते हैं हम हमारी बातचीत। बच्चों आज हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तुम्हें हम लेते हैं आज सुंदर लाल बहुगुणा जी को। नाम सुना है बच्चों आपने? बिल्कुल सुना होगा। यह एक भारतीय पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने हमारी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए बहुत से काम किए, या यूं कहें कि अपना तन मन और धन सभी इन्होंने, या अपनी अपना पूरा जीवन इन्होंने प्रकृति को दिया, हमारी धरती की सुरक्षा में ही इन्होंने लगाया। बच्चों उन्होंने लकड़ारों को रोकने के लिए हिमालयी वृक्षों को गले लगाकर उन्हें बचाने का संघर्ष किया, और उन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन भी किया। उनका मूल मंत्र था पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। बच्चों इनके जीवन के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि इनका जन्म जो है 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के मरोदा में हुआ था, है ना। और उन्होंने अहिंसा और सादा जीवन जीने के लिए गांधीवादी सिद्धांतों को कड़ाई से पालन किया उनका। और उन्होंने विमला बहुगुणा से ग्रामीण पहाड़ी गांवों में रहने और काम करने के वादे के साथ ही इन्होंने विवाह किया।

देखिए बच्चों, कितना इनका समर्पण था अपनी प्रकृति के प्रति कि जब इन्होंने विवाह किया ना, तो भी अपनी पत्नी से ये वादा लिया था कि तुम भी मेरे काम में अपना साथ दोगी, है ना। इसके अलावा देखिए बच्चों, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलित छात्रों के लिए एक छात्रावास भी इन्होंने खोला। बच्चों, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था, है ना, और इन्होंने लकड़हारे को रोकने के लिए हिमालय वृक्षों को गले लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए काफी टाइम तक संघर्ष किया। इसके अलावा टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी इन्होंने जो है इसकी शुरुआत करी। भागीरथी नदी पर बने बड़े बांधों के खिलाफ लंबे समय तक उपवास और विरोध इन्होंने जारी रखा। बच्चों, इनके इतने अच्छे कामों के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जब बात करते हैं इनके पुरस्कार की, तो देखिए बच्चों, 2009 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक इन्हें घोषित किया गया था और

जादुई बीज है, इन्हें आप खेत में बोइए, लेकिन एक शर्त है, आपको इस बीज के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये बीज जो है फल प्रदान करेगा। तो ठीक है, उसने बीज लिया और अपने खेत में बोए। खेत में बोने के बाद में उसने सोचा कि संत ने मुझे बोला था, महात्मा ने, कि इसकी जो है देख रेख करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। उसने सब कुछ किया और समय जब आया बच्चों, तो वो एक बड़ा वृक्ष बन गया बीज, है ना, और उसके फल लगे बड़े खूब अच्छे से। और वो फल था, वो बीज था आम का, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे आम लगे थे, और उसके आमों की बिक्री बहुत बढ़ गई थी, सभी जगह उसकी मांग होने लगी आमों की, और उसे खूब, उससे यूँ कहें कि धन प्राप्त हुआ, उन आमों से पैसा प्राप्त हुआ, है ना। तब उसे समझ में आया कि ये जादू बीज नहीं है, बल्कि इस बीज के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मेहनत जरूरी होती है। ऐसे में फिर बाद में वो महात्मा का उनसे दोबारा मिलना हुआ। महात्मा ने उससे पूछा कि भाई क्या रहा तुम्हारे उसका फल बीज का, तो उसने सब चीज बताई। तो महात्मा ने यही कहा, कोई जादुई बीज नहीं होता है, हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, खाली किस्मत से कुछ भी नहीं होता है। तो बताइए बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? भाई मैं तो यही कहूंगी कि हर चीज के लिए मेहनत करनी होती है, खाली किस्मत पे नहीं बैठा होना, इसके अलावा धैर्य रखना होता है, और अगर हम धैर्य रखेंगे तभी जाकर जो है उसका फल मीठा ही प्राप्त होगा, है ना बच्चों। बहुत अच्छी कहानी। आपको भी मैं यही कहूंगी कि फिलहाल हमारा काम है पढ़ाई करने का, हम खूब अच्छी सी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, मेहनत करते रहें, ताकि जब परीक्षा हो ना तो हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो, है ना बच्चों। और इसके साथ ही हम चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं प्यारा सा गीत।

इसके साथ ही बच्चों हम आते हैं हमारी बातचीत पर। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना है कभी, है ना? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि है। यह मुख्य रूप से माननीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस को जलाने और वनों की कटाई के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बढ़ने से होती है। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है ना, वो कुछ इस तरह से हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, औद्योगिक गतिविधियां, कृषि और पशुपालन, इनसे मीथेन जैसी गैस निकलती है जो गर्मी को रोकती है। और इसके प्रभाव पता है बच्चों? तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना, मौसम के बदलाव, फसलों को नुकसान, ये सारी चीजें उसके प्रभाव पड़ते हैं हमारे ऊपर। तो हमें चाहिए हम इनका बचाव किस तरह से करें, जैसे पेड़ लगाना है, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा की बचत और सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना।

है ना बच्चों? तो हमें चाहिए कि ग्लोबिंग वार्मिंग को हम रोकें और पृथ्वी को बचाए रखें, है ना? और इसके साथ ही हम बात करते हैं बच्चों कुछ इस तरह से कि भाई हमें चाहिए कि हमारी, हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था बच्चों कि रिसाइकलिंग के द्वारा हमारी पृथ्वी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। रिसाइकलिंग बच्चों यानी पुनर्चक्रण, अपशिष्ट और प्रयुक्त सामग्री को नए उपयोगी उत्पादनों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही रिसाइकलिंग कहलाती है। ये है प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, लैंडफिल कचरे को कम करने और ऊर्जा की खपत को घटाने में सहायक होती है बच्चों। जैसे बात करते हैं कागज और गत्ता, इनकी लुगदी में परिवर्तन करके कागज की लुगदी और नई वस्तु बनाई जा सकती है इससे, है ना? हमारी जो दादी अम्मा थी, वो जो हमारी जो रद्दी होती घर में, कागज गत्ते ये बस्ते उनको भिगो के रखती कुछ दिनों तक, है ना? और फिर उनकी लुगदी बनाकर उनसे कटोरा है या धामा है इस तरह की चीज बना लेती थी ना। देखिए आपने कभी, अगर किसी बड़े बुजुर्ग से आपका मिलना हो तो आप उनसे इस बारे में जरूर बातचीत करिए। प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग देखिए बच्चों, इसे पिघलाकर छोटे छोटे दानों के रूप में बनाकर विनिर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। धातुओं की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम और स्टील के डिब्बों जैसी वस्तुओं को पिघलाकर चादर या पिंड बनाए जाते हैं। बात करते हैं कांच की, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर पिघलाया जाता है और नई बोतलें बनाई जाती है ना बच्चों? देखिए आज बच्चों हमने बहुत सारी बातचीत करी और बातचीत करके हमने बहुत सारी जानकारियां भी ली। देखिए बच्चों, इसके साथ ही हम सभी आपसे करते हैं जय हिंद।

अभी छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया बालवाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर बाद हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इससे पहले गृहमंत्री पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में आज अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म आशिकी 2 से। आवाज़ श्रेया घोषाल की है।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए। हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म डियर जिंदगी का ये गीत, आवाज़ जसलीन कौर रॉयल और अमित त्रिवेदी की है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए ये कार्यक्रम का आखिरी गीत। लावारिस फिल्म में आवाज़ उदित नारायण और अलका याग्निक की है।

गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने को है। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोकगीतों लोक भजनों का कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए कोहिनूर लंगा और उनके साथियों का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कोहिनूर लंगा और उनके साथियों का गाया ये लोकगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:28 हुए हैं। कुछ ही देर बाद पहले हिंदी और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली को रवाना किया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रकृति संरक्षण में आदिवासियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। पशुओं की नस्लों में सुधार और संवर्धन के लिए प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म पाली के सांडेराव में बनाया जाएगा। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की बारिश का दौर जारी। आज 19 जिलों में बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि तिरंगा केवल राष्ट्रध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान शान और करोड़ों देशवासियों की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आज जनव्यापी अभियान का रूप ले चुका है। जयपुर में अभियान के तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर विविधता में एकता और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया।
1: तीन रंगों में केसरिया, सफेद और हरा, तीन रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया जिसका अर्थ था प्रगति और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवन प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तिरंगा यात्रा जन जन के अभियान के रूप में नई पीढ़ी में राष्ट्र भावना को मजबूत करने का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगे का राजस्थान से गहरा

0: नाता रहा है। पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर फहराया गया तिरंगा राजस्थान में तैयार हुआ था। श्री शर्मा ने कहा कि इस अभियान की सार्थकता इसी में है कि हर भारतीय राष्ट्रीय चेतना के आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे।
1: जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए। तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जन भागीदारी का परिचय दे पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है।
0: जयपुर में आयोजित ये तिरंगा रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, आर्मी के जवान, स्काउट गाइड, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। अभियान के तहत राज्य के अन्य स्थानों पर भी तिरंगा रैली और प्रभात फेरी जैसे आयोजन हुए। इनमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जयपुर में आज 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण और परिवहन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रकृति संरक्षण में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आज विश्व आदिवासी दिवस पर कोटा में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में कार्य करने के लिए सरकार संकल्पित है, उनके विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं।
2: आदिवासी समाज के इस विश्व आदि दिवस पर ये हमारा संकल्प है, हर गाँव के अंदर हम दस्तक देकर उसके परिवार से मिलेंगे और उसको केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, उनको चिकित्सा का लाभ मिले, उनको मकान मिले, कि पीने का पानी हो, बिजली हो, ताकि हम और बुनियादी जो आवश्यकता उनको पूरी करने का काम करें।
0: आदिवासी दिवस पर राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य आदिवासी समाज ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने जल संचयन की शपथ भी दिलाई। डूंगरपुर में हुए कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में गैर नृत्य सहित कई आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पाली में भी आदिवासी दिवस पारंपरिक रूप से मनाया गया। वहीं बालोतरा जिले में कार्यरत मीणा समाज के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी दिवस मनाया। दौसा जिले के नांगल राजावतान में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भाग लिया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में हुए कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। गौरतलब है कि ये दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और अधिकारों के प्रति एकजुटता दर्शाने और आदिवासी गौरव के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में आयोजित समारोह में पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान कर ये बात कही।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाली जिले के सांडेराव गांव में प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म बनाया जाएगा। इस पर 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस संस्थान में पशुओं की 30 प्रजातियों की नस्लों का सुधार और संवर्धन किया

0: जा सकेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज इसके भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि ये सेंटर करीब 200 बीघा भूमि पर बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक और विशिष्ट पशु प्रजातियों का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि ये सेंटर एक अनुसंधान केंद्र नहीं होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। राज्य पुलिस की ओर से चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आज अजमेर में जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। आना सागर नई चौपाटी पर विशेष महिला सुरक्षा श्रृंखला का निर्माण किया गया। इसमें करीब 600 बालिकाओं और महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्राओं और कालिका यूनिट, सेल्फ डिफेंस टीम और पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा स्लोगन लिखी पट्टियां लेकर आमजन को जागरूक किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मॉनसून की बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और दो तीन स्थानों पर भारी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। बरसात से शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा जिले में भी दिन भर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। नागौर और हनुमानगढ़ में दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम केंद्र जयपुर ने आज राज्य 19 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कल से 12 अगस्त तक राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। सावन के महीने में शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत आज राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहरों और कस्बों में कावड़ यात्राएं निकाली गई। जयपुर के गलता सरोवर से आज सुबह से श्रद्धालु कावड़ों में पवित्र जल लेकर यात्रा के रूप में निकले। राजसमंद में आज गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से श्री परशुराम महादेव के लिए कावड़ यात्रा रवाना हुई। भीलवाड़ा के निम्बार्क आश्रम से हरणी महादेव मंदिर के लिए 5100 कावड़िए यात्रा के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व से प्रेरित होकर भारत छोड़ो का आह्वान देश के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा लेकर आया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता के अटूट संकल्प को प्रतिबिंबित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली को रवाना किया। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रकृति संरक्षण में आदिवासियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। पशुओं की नस्लों में सुधार और संवर्धन के लिए प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म पाली के सांडेराव में बनाया जाएगा। और राज्य के विभिन्न स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी, आज 19 जिलों में बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। फलौदी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रियंका तलानिया ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर नगर परिषद टाउन हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और स्वतंत्रता दिवस समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। एडीएम ने संबंधित विभागों को समारोह से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले में आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हुआ। इसके तहत तिरंगा रैली निकाली गई। ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें रैली, पोस्टर और कहानी प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां सहित शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को देश की अखंडता और एकता को सहेजने तथा मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। आगामी नगरीय निकाय और पंचायती आम चुनावों के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों बैठक की। बैठक में निर्वाचन संबंधी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया। इसके साथ ही संबंधित प्रभारी अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी गई। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सहकार सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषक सम्मान समारोह रखा गया। समारोह में जिला कलेक्टर ने किसानों से संवाद कर उनके द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी ली। साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्होंने कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने वाले चयनित किसानों को भी सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने कृषकों को अधिक से अधिक सहकारिता से जुड़ने और कृषि के उन्नत तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कोऑपरेटिव बैंक के सहायक अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई, शाखा प्रबंधक नितिन और अन्य सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष शिविर लगाए गए। मारी संभाल अभियान के तहत खींचन ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जाँच की गयी। शिविर का उद्देश्य जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं से संवाद कर उन्हें नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने, संतुलित पोषण लेने, समय पर टीके लगवाने और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में बताया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बीते दिनों कलेक्ट्रेट में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मारी संभाल अभियान, लाडो प्रोत्साहन योजना, टीबी मुक्त अभियान, मौसमी बीमारियों और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बीते दिनों जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ। इस संस्थान का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। संस्थान के पहले बैच में युवतियों और महिलाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने महिलाओं को आरसेटी के माध्यम से अपने जीवन को संवारने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिले को हरा भरा बनाने के लिए पिछले दिनों हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत कई सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों सहित शिक्षण संस्थानों में पौधरोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। इससे पहले जिला कलेक्टर ने अभियान की तैयारियों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पौधरोपण की गतिविधियों को हरियालो राजस्थान ऐप पर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही लगाए जा रहे सभी पौधों की ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग सुनिश्चित करने को भी कहा। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। कांवड़िए विभिन्न तीर्थ स्थानों पर पवित्र सरोवरों का जल लाकर शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों और घरों में रुद्राभिषेक और सहस्त्र घट के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार यानी वन सोमवार पर शिवालयों में खासी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने व्रत रखकर शिव पार्वती की उपासना की। इसी के साथ फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। देश भर में आज सो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली ने रवाना करिया। विश्व आदिवासी दिवस माथे प्रदेश में की ठोड़ा कार्यक्रम बिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रकृति बचाबा माए आदिवासियों रा योगदान ने महताऊ बताया। जिनावरारी नस्लामाय सुधार और बढ़ोतरी खातर प्रदेश रो पहलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म

0: काली राज सांडे राव माए बनायो जावेला और राज्य री न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर जारी आज 19 जिला माए बरसात रो अलर्ट समाचार आ रहे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कया के तिरंगो केवल राष्ट्रध्वज नहीं है बल्कि देश री आन बान शान और करोड़ों देशवासियों री भावना रो प्रतीक है वे कया के हर घर तिरंगा अभियान आज जनव्यापी अभियान रो रूप ले चुकियो है जयपुर माए अभियान रे तहत राज्य स्तरीय तिरंगा रैली री शुरुआत रे मौके वणा देशवासियों सु आपरा घरा मात है तिरंगो फहरार अनेकता माए एकता और राष्ट्रीय अखंडता बनाया राखबा रो संदेश दिया
1: तीन रंगों में केसरिया सफेद और हरा तीन रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया जिसका अर्थ था प्रगति और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी यह भारत की एकता भारत की विविधता और मजबूती का जीवन प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है
0: इन मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कया के तिरंगा यात्रा जन जन रा अभियान रा रूप माए नई पीढ़ी माए राष्ट्र भावना ने मजबूत कर बारो जरियो बन रही है मुख्यमंत्री कया के तिरंगा रो राजस्थानो गहरो नातो है पहली भगत 15 अगस्त ने लाल किला माते फहरायो गयो तिरंगो राजस्थान माए ही तैयार वियो हो श्री शर्मा कया के इन अभियान री सार्थकता इनी माए है कि हर भारतीय राष्ट्रीय चेतना रा आदर्श और मूल्या ने आपरा जीवन माए अपनावे
2: जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है हमारे मन में राष्ट्र प्रेम राष्ट्र सेवा विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारे हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जन भागीदारी का परिचय दें पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है
0: जयपुर माए राखी तिरंगा रैली अल्बर्ट होलसुन सरोवर बड़ी चौपड़ माथे पुगी इन माए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा समेत कई प्रतिनिधि आर्मी रा जवान स्काउट गाइड खिलाड़ी पहली आला सैनिका समेत बड़ी संख्या माए नागरिक भाग लेना अभियान रे तहत राज्य री दूजी ठोड़ा माते भी तिरंगा रैली और प्रभात फेरी राखी गई इन माए बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि भाग लेना ध्यान जोग है कि आज सो देश भर माए हर घर तिरंगा अभियान शुरू भी है 17 अगस्त तई चालबा वाला इन अभियान रु लगस लोगा ने आपरा घरा मात है तिरंगो फहराबा और देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता सो जुड़िया कार्यक्रम माए भाग ले बाखातर प्रोत्साहित करनो है इन बरस ओ अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम री 150वीं वर्षगांठ रे सागे मनायो जा रियो है केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा और मुख्यमंत्री श्री शर्मा जयपुर माए आज 10 अत्याधुनिक रक्त संग्रहण और परिवहन गाड़िया ने हरी झंडी दिखाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया के प्रकृति ने बचाबा माए आदिवासी समाज रो महताओ योगदान है आज विश्व आदिवासी दिवस मात है कोटा माए राख्या एक कार्यक्रम माए भाग ले बारे पछ है खबर नवीसाऊ बातचीत माए वे कया के आदिवासियां रा हित माए काम करबा खातर सरकार पूरी कोशिश करी है वारा विकास खातर लगातार काम करियो जारियो है
3: आदिवासी समाज के इस विश्व आदि दिवस पर ये हमारा संकल्प है हर गांव के अंदर हम दस्तक देकर उसके परिवार से मिलेंगे और उसको केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उनको चिकित्सा का लाभ मिले उनको मकान मिले कि पीने का पानी हो बिजली हो ताकि हम और बुनियादी जो आवश्यकता उनको पूरी करने का काम करें
0: आदिवासी दिवस माथे राज्य माए न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे कार्यक्रम रखा गया डूंगरपुर माए व्या कार्यक्रम माए आदिवासी समाज रा लोग पारंपरिक वेशभूषा माए

0: नृत्य सागे रिझावनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इन मौके आदिवासी महापुरुषों रा चित्रामा से माला चढ़ार वाने याद करियो गयो। पाली माई भी आदिवासी दिवस पारंपरिक रूप माई मनायो गयो। वठिने बालोतरा जिला माई काम कर रिया मीना समाज रा कर्मचारी अहलकार स्नेह मिलन कार्यक्रम राखर आदिवासी दिवस मनायो। दौसा जिला रा नांगल राजा वतान माए राख्या कार्यक्रम माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भाग लीना। बतायो जावे है कि ओ दिन आदिवासी समाज री संस्कृति परंपरा आन बान और अधिकारा खातर एकजुटता और आदिवासी गौरव रा तिवार रा रूप माए मनायो जावे है। इन बरस री थीम आदिवासी पारंपरिक दाइया रो सम्मान जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह कहा कि मोदी सरकार का न्यू औपनिवेशिक कालरा कानूनारी ठोड़ लाया गया तीन नया आपराधिक कानूनारो उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली रे मार्फत नागरिका ने टेम माथे न्याय दिलानो पक्को करनो है। गृह मंत्री गोरीमेंडूरा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रा मैदान माय राख्या जलसा माय पुंडुचेरी पुलिस ने राष्ट्रपति रो पुलिस ध्वज देर आबाद कही।
1: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
0: पाली जिला रा सांडेराव गांव माए प्रदेश रो पहलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म बनायो जावेला। इन माथे 60 करोड़ रुपया री लागत आवेला। इन संस्थान माए जिनावरारी 30 प्रजातियारी नस्लां रो सुधार और संवर्धन करियो जा सकेला। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज इन भवन री नींव राखी। वणा बताया कि ओ सेंटर करीब 200 बीघा जमीन माथे बनायो जा रियो है। इनरो लगस प्रदेश री पारंपरिक और विशिष्ट पशु प्रजातियां ने बचावनो है। वे कया का ओ सेंटर एक अनुसंधान केंद्र नी वेला बल्कि ग्रामीण माली व्यवस्था ने मजबूत करबारो महताओ जरियो बनेला। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTSU जुड़िया मामला खातर शिक्षा मंत्रालय रा सचिव और ठावा अहलकारा सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया पोस्ट में कया के वणा संस्थागत व्यवस्थावा ने मजबूत करबा री प्रक्रिया ने सुचारू बनावा पढ़ानिया खातर जवाबदेही पक्की करबा सु जुड़िया महताव मुद्दा माथे चर्चा करी। श्री जोशी कया के सरकारो खास ध्यान मजबूत पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाबा माते है जिनसो हर एक विद्यार्थी री आकांक्षावा पूरी वै सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो आंदोलन माय भाग लेबा वाला सगला स्वतंत्रता सेनानिया और आंदोलनकारिया ने आज श्रद्धांजलि दीनी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कया के आवीरारो साहस हर भारतीय खातर प्रेरणा बण्यो रहवेला। प्रधानमंत्री कया के महात्मा गांधी री अगुवाई सु प्रेरित होर भारत छोड़ो रो आवाहन देश रा स्वतंत्रता संग्राम माय नई ऊर्जा ले रायो। वणा कया के इन आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन सु मुक्ति दिलाबा खातर भारत री जनता रा अटूट संकल्प ने याद रखियो जावेला। प्रदेश में थोड़ थोड़ मानसूनी बारिश रो दौर जारी है। लारला 24 घंटा में राज्य रा पूर्वी अलका में कुछ एक थोड़ा माथे हल्की और दूजी थोड़ा माथे भारी मेह बरसियो। राजधानी जयपुर में सुमारे सो रुक रुक कर मेह बरसबारो दौर चालियो जिनसो शहर रा निचला इलाका में पानी भर जाबा सो लोगा ने आबा जाबा में परेशानी रो सामनो करनो पड़ियो। दौसा जिला माए भी दिनभर हल्की सु मध्यम बारिश दर्ज करी गई। मौसम केंद्र जयपुर आज राज्य रा 19 जिला माए तेज बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। काल सु 12 अगस्त ताई राज्य रा दक्षिणी पूर्वी हल्का माए बारिश री गतिविधियां माए बढ़ोतरी होबा और एक कुछ एक थोड़ा माथे हल्की सु भारी बारिश होबारो अंदाजो है। केंद्र रे मुजब पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त ने और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त सु मेह बरसबा माए कमी आ सके है। सावन रा महीना माए शिव मंदिरा माए खास आयोजन वहरिया है। इनरे तहत आज राजधानी जयपुर समेत न्यारा न्यारा कस्बा माए कावड़ यात्रा काढ़ी गई। जयपुर रा गलता सरोवर सु तड़के सु श्रद्धालु कावड़ माए पवित्र जल लेर यात्रा री रूप माय कड़िया रासमन माय आज गुप्तेश्वर महादेव मिंदर सो श्री परशुराम महादेव खातर कावड़ यात्रा रवाना भी भीलवाड़ा रा निम्बार का आश्रम सो हरणी महादेव मिंदर खातर 5100 कावड़िया रवाना विया और अब है आखिर माय खास खबरा एकर फेरू देश भर माय आसू हर घर तिरंगा अभियान री शुरुआत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर माय राज्य स्तरीय तिरंगा रैली ने रवाना करिया विश्व आदिवासी दिवस माथे प्रदेश माय कई ठोड़ा कार्यक्रम विया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रकृति बचाबा माय आदिवासियां रा योगदान ने महताऊ बताया जिनावरारी नस्ला माय सुधार और बढ़ोतरी खातर प्रदेश रो पहलो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म पालीरा सांडेराव माय बनायु जावेला और राज्य री न्यारी न्यारी ठोड़ा माथे मानसून री बारिश रो दौर जारी आज 19 जिला माय बरसात रो अलर्ट इंडसा के ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 28 पूरो व्यो मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी

खेतीबाड़ी सुन नाला सगला भाया बहने आपरा सेदे भाई तरफ हूँ घणान घणा राम राम। भाया देखो के किसान आदमी हान, किसान में देखो के खेतीबाड़ी जो को काम धंधो चले वो अपना बड़ो जी जानू लगाइन प्रोन करा और जी जानू लगाइन ई बात करा के अपन देखो के ज़्यादा फसलां पा सका, फसलां छोखी हुए ज़्यादा आमदनी हुए। तो ई बात देखो के कई बात है कि अपन जकी सरकार है, भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है, अपन खुद भी हाँ, तो आजकल जकी अपन देखा के जकी होड़ लागोड़ी है ब होड़ आ लागोड़ी है कि हली हली पैदा की कर ले और ई हली हली पैदा रमाइने हो चाह के देखो नफो हल्लो की चीज रो है भी नफा मुनाफा चक्कर मायने आप कहीं करा कि अपनी जकी जमीन है भी ने खराब कर रही हैं दिनों दिन। रोजिना रासायनिक दवाया रासायनिक खादा उन्दे माते नेकान बीरों जकी कहीं है कि अपनी जकी जमीन है भी जमीन की उर्वरक क्षमता जकी है बाद दिनों दिन खराब हो रही है। तो ये बात है जकी अपन राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, टेम टेम आते जका अपना जानकार है वे भी किया करे कि भाई जको जैविक खेती है भी माते जोड़ दे, रासायनिक जकी चीज़ा है, रासायनिक खाद है, रासायनिक जका जहरीला जका कीटनाशक है, यूं थोड़ी घनी दूरी बनाओ। और मैं तो आके हूँ थोड़ी घनी कहीं जे आप पूरी जी हूँ जे दूरी बनावा तो ही फायदा रो हो दो है। अब सवाल वो वे के ए चीज आप क्यों करा के ए ई बात करा के मैं जो थोड़ी सी के लागी भाई लट लाग रही है ओलो सा दवाई ली है दवाई छिड़क दिया तो ए जकी चीज़ा है अपन छोड़ा ना जन वेला। और ई बात ही अपन देखो कि जैविक खेती अपनावनी बहुत ही जरूरी होगी। ई रिमाइंड कही है कि जैविक खेती जो आप अपना वाला तो कई जकी बीमारियां है भी हम अपन बचा ला बचण कारण है कि खेत रमाइने अपन जो को भी कीटनाशक या जकी रासायनिक खाद ज़्यादा जकी अंधा दूध न की अपन ने कहा तो बीरों कही है कि बा जकी फसल गई भी फसल न देखो कि फसल हर तरीके अपन पावा

0: बाजरा है, मूंग मोठ, जितनी भी फसल आप पावा तो बिया ने भी आप सेवन करा। और आप बा जीमा जीमा जाना बीरमा इन्हें जगह पोषक तत्व तो है बे के मायनू आया जमीन में आया। और जमीन मायने कहीं करियो आप अंधाधुंध जकी है दवाया खाद नेकी तो बीर मायने जेर है और वो जेर बीर मायने मिले और वो पच आप जी मदन अपने भी जी जाए। दूसरा जगह चारो है अपना जगह डो डांडा है बियाने भी अपना चारो वो ही नीरा तो वो नीरा जन बियाने भी जो है थोड़ो घणो जाए पेट में जेर। अब आ जाए एक सदे हुए बैठ बैठा बातें तो कर रिया है और इतना आगू कहीं फर्क पड़े इन खेत में इन्हें नेका बीरो कितो तो फसल में जावे इन कितो अपन पेट में जावे। तो मैं एक छोटो उदाहरण दूँ जैसे कि आप बीमार अगत कदी हुआ मान लो माथो दुख है पेट दुख है ताव छड़े तो अपन देखो कि डॉक्टर साहब कन जावा और डॉक्टर साहब कन जावा अपन एक छोटी सी गोली देवे आ गोली थान लेनी है और आप सर दर्द रह जाए तो अब बात देखने में तो कितनी छोटी है और अपन शरीर कितो मोटो है पण बा देवे जना अपन एक को माथो दुख तो रहे तो इरो मतलब एक बा असर करी है बीरो जको मायने जकी चीज है बा इतना मोटा शरीर में असर करी है तो जकी रासायनिक जकी चीज है बा आप अपना खेत्र मायने डाला तो बा अपना पौधा मायने जाई फसल में जाई और फसल में जाए जन बा अपन नुकसान करी। तो ये बात मारो कहण वही है कि अपन जितनी ज्यादा ज्यादा हो सके अपन जैविक खेती है जकी अपना होनी जैविक की खेती जे अपना वाला तो देखो कि इरमाइन आए कि जब भी अपन दिमाग में हो जाएगा अपन जो अब जैविक खेती करा पहली देखो बडेरा करता आ बात अलग है कि देखो कि ज्यों ज्यों टेम बदले बीर साथ साथ अपन बदलना है लेकिन बदलना हाथा तो अपन ने कई चीज़ा जकी है बियाणु ध्यान रखना है। तो गोबर खाद केचुआ खाद ने अपना काम लेवा तो गोबर खाद काम लेवा तो अपन आ जाए भाई गोबर खाद तो मोल लानी पड़ी तो मोल क्यों लवा आप किसान आदमी हाँ पशु रखो गाय रखो भैंस रखो गोना रखो बकरियां रखा तो बीहू जो कि खाद वही भी खाद ने अपना अपना खेत में नेका तो बीरू पैदावार वही। और आजकल देखो कि अपन खुद किसान आदमी हाँ और अपन भी बैठ बैठा सोचा चौपाल मत बैठा बातें करा गुआड़ में बात करा जट हते हुए बट बात करा कि भाई है जो को थोड़ गुण अपन खेत मायने कटी या तो एक खेत में जगह जमीन भारी ज्यादा है या एक कम है तो के यार को थोड़ो तो खूणार मायने अपन जो जिमण वात है धान जो को है नारो बाणो चाहिए थोड़ा कि मूंग है एक बाजरी एक मोट है गंवार है के नारा बाना चाहिए बातें सब करा आप लेकिन काम एक ही नहीं लेवा। तो मारो बड़ी वो ही निवेदन है कि आप कोशिश करो और घणो कोई फर्क नहीं आवे बिन मायने भी आप जो को आराम बढ़िया खेती वे सके और जद जमीन सही रही तो देखो कि बीर मायने जकी फसल वही बाबी बढ़िया रही। और आजकल देखो कि नई नई जकी बीमारियां बाप रही है तो बे आप देखा नहीं पहली जगह क्या करता अग बनने तो एक रेल भी चालती जकी ना कई भाई लोग यूँ बोलना मायने कैंसर बोलता बे जन पंजाब दिने और दिने जट ज़्यादा अंधाधुंध रासायनिक जकी दवाइयाँ है रासायनिक खादा है बियाणों काम में लेता जना है जो को कई तरह की बीमारियाँ फैलती। अब बे लोग भी हावचेत हुई है बे आप जिम्मन वात ओड़ोल ओड़ोल नारो कर रूको तो ये बात है अपने सब जितना भी किसान भाई हाँ सबने इस बारे में सोचनो पड़ी और विचार करना पड़ी कि अपन जैविक खेती अपनावा। इस साथ देखो कि अपन जो कि जल संरक्षण से बात करा तो भी है जो को बीरमा ने भी मिट्टी ने जो रोकनी है वो रोकनी है सिंचाई भी कम जरूरत पड़ी अगली बात वही और खर्चो भी कम आई दवाइयाँ देखो कितनी महंगी है। और अब गेरो आप उदाहरण देखा एक बात करा के लगभग आप नागौर जिला की बात करा तो बरसात हुई एक बार पहली बरसात जोरदार वेगी और जोरदार हुई लगभग भाई लोग सब खेतियां बाय ली और खेतियां बाय ली इन बाद में देखो कि कटी छांटा छिड़क हुई उन कटी कोन हुई उन सब है जो कि जगह परालू वेगी तो परालू वेगी जट घास फूस भी कोनी हो और भाई लोग कोई दवाइयां भी कौन छाटी तो देखो फसलें कितनी चौकी है। हाँ बरसात की मांग जरूर है देखो आ तो अपना बात में कोनी और बरसात मंडियोड़ी है कई जगह हुई है और मैं बबो देखो कि मंडियोड़ो है आज भी बादलाद हुई है हम चाह रहे कटी काले भी हुई है कटी आज भी हुई है तो ये सब जगह हुई तो अपन खास बात ध्यान रखना है कि खेती मायने अपन ने थोड़ो घणो पाचो ध्यान देवण है और जैविक खेती जकी है भी वात अपन थोड़ो ध्यान दे जैविक खेती की तरफ अपन पाचो मुड़नो है तो ही देखो कि आप खुद बच सकें ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋ ਡੰਡਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਰਾਨ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਬ ਸੁਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: और भैं देखो के जो जावा बातचीत करा गायंत्रो करा, तो देखो के ई वास्ते गायंत्रो में ई बात करा जावा क्यान खेतीबाड़ी हो रही है, आप लोग कहीं कह रहे हो, अलग अलग गांव में जावा, अलग अलग भाइयों बातचीत करा। तो आज मारो भी देखो के कोई गांव जाऊँ हो, तो मैं किए गांव गियो, किया भाइयों बातचीत करी, बट कहीं कहीं फसलां बाई ओड़ी, बे कहीं करे कहीं नहीं करे। लो आ बात आप सुनो। भैं देखो के आज हथई करने वाते निकलिया, और मौसम भी देखो के बढ़िया यूँ जोरदार है, चारा फाड़ है, बादल आयोड़ है, कई जगह बरसात हुई भी है, कई जगह टिमटिमाट भी है, और सुहावन बनियोड़ है। तो हथई करता वाते भया वाते निकलिया, तो देखो के अटे भाई लोग कासा खेता में उबा है, तो ओ क्यों गांव है, कोई ढाणियाँ दिखे है, तो दगा किए गाँव रे ढाणियाँ है, कौन है, कहीं काम धंधो वह दगा बातचीत करा। राम राम सा।
2: राम राम सा।
0: कहीं सा कहीं आप रो नाम?
2: मारो नाम जगदीश है।
0: जगदीश जी, तो ढाणिया किया गांव री है?
2: ढाणिया अमंडा की है।
0: अमंडा की ढाणिया, तो अमंडा ढाणिया तो कड़लू गांव में आवे?
2: नहीं, पहला कड़लू में ही, अब अलग हो गई, अमंडा नगर हो गयो।
0: अब अमंडा नगर हो गयो, तो पहली कड़लू गांव रो मां ने बात थी भाई कड़लू री अमंडा ढाणिया।
2: एला थोड़ घणो बोल सा, मैं तो बार पुरानिया बजिया तो कड़लू री कहवे।
0: कड़लूरी कहवे, क्योंकि बीरू पहचान हो रही। तो अब तंग राजेशो गांव बन गो नारो?
2: हाँ, राजेशो गांव बन गो।
0: राजेशो गांव बन गो,
2: अमंडा नगर बोले भी ना?
0: अमंडा नगर बोले। हाँ। तो सा जगदीश जी, देखो के फसल आपरे बायोड़ी है, तो मूंग भी दिखे है, गंवार भी है, बाजरो भी है, कितना टाइम हो गो भाया ने?
2: भाया ने तो टाइम खास हो गो, 2-2.5 महीना होगा।
0: 2-2.5 महीना होगा, तो जगी टाइम बाया जन बरसात पानी केड़ा का?
2: धीमा धीमा या
0: धीमा धीमा या, तो धीमा धीमा याद ने बीरबाद रमाइन है?
2: बीरबाद रमाइन 5-10 दिन ना योजन, थोड़ थोड़ 5-5 हजार आगे सांटा बढ़िया पाऊँ छोकी पन्नब की।
0: हाँ,
2: 5-15-20 दिन 25 दिन जान ले देर, और उम्राड़ में हो योजन, अब हका तो ताजी है, वरना बाहर तो बड़ा है
0: बड़े है। तो आज देखो के वो मौसम की बढ़ियोड़ो है, तो बताओ भी एक देखो के उसके आज बरसात छोकी हो जावे, या 1-2 दिन में छोकी हो जाए, तो की कर रही?
2: छोकी उजिया जन ताजो रही, धन बीत के मिनका के सब के धान हो जाए, यानी आज का भगम की अंत की होना नहीं।
0: आज रे जाम अगर बरसात नहीं हुआ जाना क्यों होना को धान का होना मतलब वो है। तो जगदीश जी देखो के निन्नान पाली तो तंग काट लिया?
2: निन्नान पाली हुए तो घास भूस ही कौन नहीं है, काटने को काम ही कौन पड़ी?
0: काम ही कौन पड़ी हो। और देखो के एक बात तो है, कई बार कहीं है कि 2-2 बार बाय दे, 3-3 बार बाय दे, खर्चा बेड़ा तो कासा कर देवे?
2: नहीं, अब के खर्चा बेड़ा तो हम ही नहीं करी, अब के तो फसला तो एकर में बीवी हलिया परालू रहेगी महीनो भरी, हाल परालू है, हलिया तो
0: परालू है। बात आप री हाची है, मैं देखो गवान माइन जावा, और गांव में जावा जाना पूछा तो हगले ही आई कहे भाई अब के माने मामलो ठीक है, पर अब आ रहा जी की बरसात री खंच खंची है नी, इन मामलो गड़बड़ है।
2: क्यों? नाडी तालाब खाली पड़ी,
0: नाडी तालाब खाली पड़िया। तो देखो के आज

0: बाड़ी ये काले की सामरे कई हमचार है कई गवान मा इन बरसात हुई भी है तो थांगा टे तो मन लागे कोनी घणी हुई को छांटा छिड़को यो
1: छांटा छिड़को आंगनो आंगनो आलो करियो की मतलब
0: आंगनो आंगनो आलो करियो है बात बढ़िया है। तो आप रे कई हल्ली फसल कई भाईड़ी है
1: हल्ला तो गुवार मूंग है
0: गुवार और मूंग है तो बाजरी भी भाईड़ी है की
1: बाजरी कोई मिनगांग भाईड़ी है घर भर तो 5 बीघा में 4 बीघा में कोई जुवार बाजरी है
0: जिमण वात कर पड़ तो
1: जिमण वात दावा डोका हो जावे
0: डोका हो जावे। तो गुआर केड़ो के वे
1: गुआर तो लाली साल तो घणो यो 4 क्विंटल बीघा तई हुई गो
0: हां
1: अब के जो अब देखो बरसात माते
0: नहीं हालत ही अगर जे मान लो बरसात हो जावे छोकी हां
1: छोकी ताजी बरसात हो जावे अब के 2 क्विंटल भूख सके बाकी अर्जन तो हुई गो
0: मतलब छोकी बरसात यहाँ के मामलो ठीक हो सके
1: हाँ कि 12 महीना जुगाड़ हो जावे
0: जुगाड़ हो जावे बात आप रिहाई दे। तो बेरा टूबेला भी है आप रे
1: बेरा टूबेला छिदी छिदी है पानी खारा है कोई शोक में फसल हुए कोई में माता फोड़ी हुए
0: माता फोड़ी हुए तो पानी ठेठू ही खारा है के
1: नहीं, अब खारा अब पहली पहली तो कलता ताजा अब खारा होगा उंडी की ऊपर पानी
0: उंडा किया परा तो किता फुटा मा तो उंडी की है
1: लमसम 600 हाडा 600 अपना 600
0: ओ जना तो मामलो गेरो घणो गियो है तो पच अब जैसे के आज जो बरसात री खंस खाएगी और एड़ार मायने जे भी फसल न मान लो जे पानी पावा तो की फायदो है के की कोनी
1: इन गुवार मोट ने चमसल एमे तो कोई फायदो कोनी कोई पीड़ी है को कुपासान बायोड़ी है बे ती ती ती ती है पावे तो बे लीली लीली रेवे बाकी उणो पैदावार के नहीं
0: कुपासन में पड़ सके बाकी हम बाजरी में मूंगा में के गुआर
1: में तो पानी से पानी बिन पानी पाइन चाहिए हो तो बे तो एटो एटो बच्चा बड़ा बलाए फिर हो जाए
0: ओ नुकसान हो जाए
1: नुकसान खारो है पानी
0: पानी खारो है तो कई कहवे नहीं के जद बरसात योड़ी वे तो की बरसात आलो पानी की ओ पानी ने है जको भेड़ो कर परो और पावाजन फसल हाथरी वे
1: वो भेड़ो कर पावाजन में खारा में मीठो मिल जावे जन वो थोड़ा सो वो पानी हारो मिल जावे
0: हारो मिल जावे जन वो थोड़ो फर्क पड़ जावे तो बात आपरी ठीक है सा तो पचे आठ स्कूल स्कूल
1: स्कूल है
0: ढणियामी है
1: हां ढणियामी है 8 बजे तक है
0: 8 बजे तक है तो डाउड क्याने भेली है कि नरनारी है टाबरा
1: नहीं भेली है कौन ड्राइव जाने पटावे है कौन कोई 5-10 टाबर पड़े सब प्राइवेट सब स्कूल तो खाली पड़ी है
0: माँ साहब है स्कूल लगेड़ा
1: माँ साहब 4-5 है
0: 4-5 लगेड़ा है तो आठों जी आठ पढ़िया पच टाबर आगे आपने स्कूल कटाई उड़ी है
1: आठ बजे बच्चे पढ़न गवर्नमेंट में पढ़न जावे तो कर दू
0: हाँ गवर्नमेंट की बात करा आप
1: थिरोद 12वीं है
0: थिरोद 12वीं है तो नेड़ी तो कर लू ही पड़े थांगे
1: नेड़ी थिरोद कर लू बराबर ही पड़े
0: बराबर ही पड़े कितनी किलोमीटर पड़ जा
1: कर लू पड़ जा 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर थिरोद है
0: 4 किलोमीटर थिरोद है लगभग बराबर ही पड़े
1: बराबर
0: तो हल्ला टाबर पर कन्ने जावे बनने कर लू जावे कर लू जावे गांव रे गोन की रस्तो ठीक
1: है मुंड भी लागोड़ो गांव है
0: व्यवस्था भी है बात आपरी हच है और दो डंडा बात है कहीं है कोई हारी बारी बीमारी हो जाए तो गांव रे मायने है कोई व्यवस्था की गांव कड़लू में तो कोई उला नस कंपाउंडर के बैठे भी कोनी
1: गांव को
0: हां
1: गांव को तो कोई बैठे ही कोनी प्राइवेट वाला है जगह बे दवाया
0: भैया
1: हां गवर्नमेंट तरफ तो कोई है भी
0: नहीं गवर्नमेंट तरफ कोनी और मिनगा बात है
1: मिनगा बात है तो कड़लू में हॉस्पिटल है बनियोड़ो और
0: अस्पताल बनियोड़ो है
1: अस्पताल बनियोड़ो
0: और थिरोद में
1: डॉक्टर भी बैठा थिरोद में अस्पताल कोनी
0: थिरोद में अस्पताल कोनी तो छोटो मोटो काम हो जन कड़लू ही जाओ
1: ज्यादा लमसम मंगे गांव को काम कड़लू ही है
0: कड़लू ही है बात सही है तो अब देखो कि जीव अब बरसात आज मंडियोड़ी है और उम्मीद भी है देखो बरसात छोकी वे वाला
1: तो भगवान की राय पे और उम्मीद दूजे मिन काई करा तो कोई हार दे दे बाकी पार तो भगवान गाली
0: भगवान गाली बात आप भी अच्छी है तो दो डंडा भी राखो
1: हाँ
0: तो
1: बारा
0: काई राखो हल्ला
1: अब हल्ला कोई बेया कोई आगे घर में एक दो भैंस है कोई के गाय कोई छिदा पादला एवड़ भी है
0: एवड़ वगैरह पच मान लो चरव ने करो ने कहीं करना पड़े
1: कोई शोक बीड़ो ले ले यार कोई अंगोरा में यार माटा में गलिया में यार मार का माते यार टाइम पास
0: पहली आले बीच तो अबे कम है
1: पहली आले बीच कम है तो जगह में कुंदरी पहली आले बीच सराव कटे
0: चरवण जागा कुंदरी बात आपरी हची है तो देखो सा आगे गाय भैंस राखणो एक तो खाद हो जावे
1: खाद हो जावे दूध मोल लाणो कोन पड़े
0: दूध मोल कोन लाणो पड़े दूध मोल लावा तो देखो केड़ो आवे कई ठा पड़े
1: वो मोल लावे जो तो डेरी में तो बेड़ो आए
0: डेरी में तो बेड़ो आवे हांत्रो आवे एक मिलावटी आवे
1: मिलावटी गाय को और भैंस को और बेड़ो आवे
0: यार
1: वो ये तो घर को तो बकरी को देणो खावे तो वो तो घर को तो है
0: घर रो है बात आप रियाची है। तो देखो कि अब जब बरसात अगर उजियावे जोरदार तो पचे भाई लोग कहीं काम करे खेती में
1: खोल कुछ लाई धन चराई फसल पाकी जन बाड़ी और बाकी बगिन कचरा पूछ पाड़ नालो ने नाणालो काम तरियो
0: नाणालो काम तरियो को नहीं। पर एक बात बताओ कि क्षेत्र में इन्हें ते खाद हल्लो काम क्यों ले हो? एक तो अपन गोबर खाद काम ले हो क्योंकि मोल लाना पड़े कटाला।
1: अब मैं तो गई कहाँ तो दिन है जो को खाद ना के नहीं मुझे तो ज्यादातर तो वही खाद ही ना के डीएपी
0: डीएपी ना के फसला छोकी की रहूं है
1: फसला छोकी जब ये खाद ही हुए देसी तो देसी है
0: देसी तो देसी है देसी तो देखो कि नेका जाना केवे नहीं के तीन दो तीन साल तक पास नेका नहीं काम कौन
1: हाँ हेउज खेत के मन जो को फसल पानी नहीं पिए भी मैं तीन साल छोको खाद ना देवे तो बराबरी कार करे
0: बराबरी कार करे। तो वासा वा देखो कि जगदीश जी आप भाई ने जानकारी दी ये बात आनो गणो गणो धन्यवाद राम राम सर
1: राम राम सर।
0: तो भैन देखो कि जगदीश जी भी आ बात कह रहा है कि अपने खेत्र मायने जो को है देसी खाद ने का एक बार अगर देसी खाद नेक दियो तो तीन साल ताई खाद नेकनी अपने जरूरत को नहीं पड़े। तो देखो कि एक तो देसी खाद सस्तो आवे ढो डांडा रखा तो गुरु भी जावे और तीन साल तीन पास देखो काम को नहीं तो आप सालों साल जो को है यूं भाग बांध लो या हल जमीन हुए तो कभी आपके भी खेत में नेक दियो या उपरेट नेक दियो तुंडी ने नेक दियो बीच में नेक दियो। तो ये बात है देखो कि ये बात रही भी अपन ने ध्यान रखनी है और ज्यादा से ज्यादा है जो अपन जैविक खेती काम में लेनी है। और अब सुना आप एक सूचना
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: और भैं देखो कि पीएम कुसुम योजना यानी जकी है पीएम कुसुम सोलर पंप योजना आ अपन भारत सरकारी है और आ योजना देखो कि अपन वात चलाई है किसान वास्ते और किसान वात चलाई है आ एड़ी है कि जे अपन देखो कि लाइट रो जो को झंझट रहे बिजली रो आई एक नहीं आई एक बिल भरोन ओ भरोन भरना ही पड़ी बिल तो भरना पड़ी लाइट अपन ले जाना लेकिन ई योजना रे मायने ओ है कि अपन जो को सोलर लगावा तो सोलर अपन अपने जो की ट्यूबवेल है या जो को अपन सिंचाई जो को साधन है बीर मायने जो को कोई पंप लगाना चाहवा तो वो अपन चाल सके। तो ईर मायने देखो कि अलग अलग है जबकि सरकार है भारत सरकार है राजस्थान सरकार है ये सब्सिडी भी घनी देवे भारत सरकार मायने देखो कि जबकि सब्सिडी देवे बा लगभग अपने राजस्थान सरकार तो देवे 60% और भारत सरकार ये दोनों ने मिलाई परी और 70% तीन देखो कि सब्सिडी भी जावे लोन भी मायने कही है जो को मिल जावे तो ये जकी है ये अपन ने लगावा तो भी अपन फायदो रहे दिन रे मायने देखो कि लाइट रो झंझट रेवीज कोनी और सीधी आप जो को सिंचाई कर सका और दिन में जकी आप सिंचाई करा तो अपन रात ना सिंचाई करने जरूरत को नहीं पड़े क्यों दिन में देखो कि टेम जो को है अपन खूब मिल जाए नहीं रात ना देखो कि कई बार सिंचाई करने वाते हाथ एक दिन और राखनो पड़े लाइट चांदनो भी राखनो पड़े कई बातें हैं जिकी देखनी पड़े अंधारी रात में थोड़ी दौड़ी पानी तो वे तो दिन रे मायने आप कर सका इराता ते देखो कि कई जकी योजना है सोलरी बे और भी लागे भी हम हर मायने सब्सिडी मिले इर मायने अपन जे औरों कनू नहीं लगाना चाहूँ तो अगर कोई लोन वोन लेना चाहूँ तो बैंक अपन लोन भी दे देवे यूँ करन कुल मिलाए जकी है।

लगभग 90% तो यहाँ पर मिल सके पैसा, कि राजस्थान सरकार दे कि भारत सरकार दे, और बाकी रो लोन भी हो जाए तो 10%, मतलब हो रुपया मुद्दस रुपया अगर जे आप कन्न लगवानी मत कर परा और जे काम चालू करना चाहवा तो आप कर सका। तो देखो के भाई चीज़ा तो बड़ी ही है, और के यूजिया वे इरमान अगर जे ज़्यादा बिजली आप बचे तो आप बिजली है जे कि सरकार ने दे सका, और बीरों भी देखो कि अपन कमाई बेच सके। भाई लोग जगह आ तो देखो कि अपन किसानानी है खेत मायने लगवानी योजना, घर माते जगी लगा रही है सोलर, बिया माते भी अलग अलग सब्सिडी है, तो आप निश्चित है राजस्थान सरकार कितनी दे, भारत सरकार कितनी दे, और बीर मायन वो भी है कि कम कम है जो आप ही तो सोलर लगाओ लगा इतनी सब्सिडी मिलेला और अधिकतम इतनी मिलेला। तो देखो कि बहुत सुविधा है, अपन समझना है और अपन चाहो तो लगाएला, खाली अपन बिजली माते निर्भर रहनी जरूरत कौन पड़े। और देखो के अब तें के वो के आज तो है जो को जगदीश जी थी बढ़िया बातें बताई, तो यान खातिरदारी मायने सहदेव भाई की करिए कोनी आपरी बातें ठोके, तो बहन देखो के सावण महीनो है तो जगदीश जी की खातिरदारी मायने सुनाओ आप एक वो लोक गीत।

भयां देखो के और लोक गीत गाए हो रामलाल निर्मल और यानी पार्टी और भयां देखो के बातें करनो मन घणो ही करे पर घड़ी दिन देखो के देखा जन कहीं है के जो खेती बाड़ी रो तेवड़ी रो टेम है बो वे पूरो तो आप रा सदैव भाई ने दिराओ सीख करा राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म मधुमति से। आवाज लता मंगेशकर की, संगीत सलील चौधरी का और गीतकार शैलेंद्र।

लीजिए सुनिए आशा भोसले को फिल्म का नाम दास्तान, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार साहिर लुधियानवी है।

0: कोई आया लचक।
1: लीजिए सुनिए आशा भोसले को फिल्म लाजवंती में। संगीत एसडी बर्मन का और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है।

जब सुनी लता मंगेशकर को फिल्म का नाम हलाकू, संगीत शंकर जैकसन ने दिया है और गीतकार शैलेंद्र है।

यह कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आरती मुखर्जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम गीत गाता चल, गीत और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो गौरबंध।

0: करना है।
1: अब हाउजेजी थे हाउजेजी को वो फोन करे बिन बिन लो बुझे।
2: काका जी राम राम।
1: ए राम राम शाही राम राम शाही अफरों जो कोकिनीर गांव भिजो।
2: गांव कक्कू है सा दारू राम नाव है।
1: आओ हो दारू जी कक्कू में कोई करो।
2: कोई करा खेती तो करा काका जी।
1: आओ मैं पानी कैसे के कक्कू का।
2: मैं पानी ठीक है आज तो अबार बरसे धीमो धीमो।
1: आज सही बाजे राम जी राजी ये देखो मैं आज गैर सुखी।
2: हाँ और आप कैसे हो।
1: ए काका रेडी जी जी आप सुनो घर में परिवार में सब क्या नहीं हो।
2: आओ घर में परिवार में सब ठीक है आनंद मंगल है कृपा आपरी।
1: ए प्रोग्राम कैसे हो लोगे थोनी।
2: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे।
1: एकले हुनो खगला नहीं हुनो।
2: खगला नहीं हुनो एकले काई सुना काका जी।
1: बीगनी आका जो कोई करे थोने।
2: बीगनी आका कान तो करे कान वो नहीं करा खेती रो।
1: लूनी भाईयो।
0: काई को काका।
1: काई को काका काई को काका जो भाई है ना उरी है।
0: आओ आओ काका हेलो।
1: भाई भाई रो फोन है तुमसे बात करना चाहूँ ता बोलो हेलो।
0: हेलो
2: हेलो राम राम लोनी भाई।
0: राम राम सा राम राम सा भाई जी खेता निनान काट लियो कहीं हो।
2: निनान काट दा।
0: अबे बरसे में कीकर कटे हो पहली टेम हुई काट लेता।
2: पहली तो काट दियो थोड़ थोड़ कई धार अब की फसल लागी दिन आज बेस्ट में। हाँ
0: अब की धान हर साल हो यो कहीं।
2: आज खास ठीक है अब तो क्या बरसात होगी नहीं बरसात हुआ सब खेल।
0: हाँ सी ये मूंगा रे मोटा गेर फाल आउन लाग गयो।
2: आओ अब फाल आउन लाग गयो अब सावन महीनो आयो अब जब ताई।
0: हाँ बाजरे हिटा काटे।
2: हाँ
0: जन एक आड़ी बता।
2: पूछो भाई जी आज जन बता दे। हाँ
0: एड़ी किसी चीज है जिकने दूध में मिलावा जन दूध मीठो हो जे और जे दूध महीना सग चावल नेक दाना तो खीर बन जावे। आज कहीं होना ला
2: आज ले रही सुना दो भाई जी।

0: हेलो
1: ए राम राम श्या
0: जी। राम राम सा
1: ए आप रो न्याओ बीजो को किनीर गांव बीजो
0: जी। मैं संदीप सोनगरा बात कर रहा हूँ, गांव सिरसला जिला चूरू राजस्थान से।
1: आओ होश कई काम दिन जा हुए हो।
0: बस काका की कौन कर रहे हैं अभी तो शाम को, जो अभी का मैं जाऊँ बस तो काम कर रहा हूँ, जो तो तीज को त्योहार आना रहा है तो भी मैं सिलाई को काम कर रहे हैं फिलहाल। तो
1: अरे वाह ये वाह काम रो कैसी योग जा लियो।
0: काम पीछे तो मंदो ही चल रही है थोड़ो, क्योंकि खेती को काम कर रहा है तो भी सागे सागे अब जो आप सिलाई को काम है वो आप बढ़िया चल रही है, क्योंकि जो आप जो राजस्थान को जो त्योहार है तीज त्योहार है बावड़ी ले डूबी गुणगौर, तो तीजा को त्योहार का सागा आप जो जो अपना रंग रंगीला जगह अपना त्योहार अवपा की शुरुआत हो रही है, सिलाई को काम भी है बहुत जोर से चल रही है।
1: अरे वाह और भी जो काम मेरे परिवार में सब क्या नहीं हो।
0: की होगी तो भी सभी बहुत बढ़िया लग रही है।
1: अरे वाह जीव शेरो जोर मैं बानी कैसे हो के बनी चूरू का नहीं।
0: सुरुपानी में पड़ी की अगर बात करें तो साहब काका ही है क्या, काल तो सुबह 4:30 बजे लेकर 11 बजे तक जी की सावण की जी की फुहार आई भी को आनंद ले रहा, और जी की बरसात है अभी जो बादल है वे तो छा रहे हैं।
1: अरे वाह ए लूनी भाई यो
2: काका
1: ए भाई का फोन है जोर से बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो लोनी भाई। राम राम।
2: राम राम सर। राम राम सर पगे लगो।
0: जीवता रहो आज मैं तार साहब बहुत दिन से बात कर रहा हूँ।
2: अब देखो कने काके आगे निनान ग्राउंड जानो पड़े, कने पढ़ाई में बिजी हो जाए अपन, कने काको के आज तो हाल नहीं पड़ी।
0: सही बात है ये तो माने भी घर वाला बहुत ज्यादा परेशान करे क्योंकि वो टाइम इश्यू आ रही है, निनान काटने खातर तो जानो ही पड़े।
2: छोटी गाड़ी बता दो।
0: हाँ बोलो सर।
2: सोने को पिलंग नहीं है ना ही मेल बनाए, एक रुपया पास नहीं फेरी राजा के लावे कौन होता है।
0: हाँ तो ये है कि आज तो थे ही मान जवाब बताओ, आज कई दिन के बाद में थर प्रोग्राम में जुड़े हैं तो आज थोड़ी
1: भाई
2: जी क्या घना दिन प्रोग्राम होने से दिमाग में बैठी कौन थे बताई दो।
1: ओ जंगल का शेर।
2: हाँ जंगल का राजा होता है शेर।
0: हाँ जी
2: आज कहीं हो ला भाई जी हो।
0: हाँ थे माना सुना दियो सीमा मिश्रा की आवाज का मैंने अपने जो सावण को बहनों चल रहे थे भी मैंने लहरी हरी जी की परंपरा है वह अपने राजस्थान की वह ही सुननी चाहूंगा।
2: काका आयो
1: आ
2: मीठो मीठो गीत नहीं ले रही हो
1: जो जाऊ तो मर भी जा।

0: काका जी राम राम।
1: ए राम राम श्याई, राम राम श्याई। आप रोन्याओ भिजो खोके नीर गाँव भिजो।
0: नाम मारो तेजाराम ठोड़िया है, गांव भरनावा है, तहसील लाड़नो है, जिला डीडवाड़ा खुचामण है काका।
1: आओ हो तेजाराम जी, कोई काम दिन जा हुए हो?
0: धंधो काका आड़ाओ मैं गया बेशियार गोना सरो।
1: आओ हो कितनी के कोई गोना बकरिया हो?
0: दो बकरिया है, दो भैंसिया है, तीन गया काका।
1: अरे वाशो वा धन राम जी राजी है की हरियो हुई को नहीं हो?
0: हुई काका ठीक से हुई है की गुआर फिड़ा है।
1: अरे वाशो वा जी ना ए भाईओ।
0: हाँ काका।
1: ए गांव का नी मैं पानी केड़ो की हो?
0: काका ठीक है कहा ली हुआ पांच पांच अंगल।
1: अरे वाशो वा क्या कहना है, वो देखो अब राम जी बरी सी हो।
0: हाँ काका काकी काई करे?
1: ए काकी काई करे थोड़े कोके ने हाका करे कोकी और की नी करे। अब आज तो चौमासो है जी को पूछो ही मत जी न थे जो
0: काका। ओ रगड़ो डा मारे दाम रोड़ा करा थोड़ा धन बढ़िया जत नहीं मोड़ो है तने।
1: अरे बीरा कहियो घर की लक्ष्मी आपन दी कानू होना दी कानू काट दा।
0: आज मैं करूँ काका लिंच में इधर कहने क्या वास्ता में बोला ही होने।
1: आज है ये मेरा हांदी बजोड़ी जी में।
0: हाँ
1: ये और बेजो फोगाम के शोक लग गये हो
0: काका। बेजा ही जान पड़ा क्या बिजली मिट्टो लग गया मन तो वो भिंडजारी और सुना जो हर साल भिंडजारी मिट्टी बोल।
1: हाँ भिंडजारी मिट्टी बोल थे घर मत बोल जो।

0: साले गया बेचा सरावा।
1: अरे गया बेवड़ी कितनी का बार दूध कितो हुए?
0: तू तो दो तीन किलो जा एक भेज गई है।
1: अरे बढ़िया सा बढ़िया जना बार खीर बनाओ ठोको आउन के महीने।
0: हाँ खीर तो बनावा।
1: और लीलो गणो ये गया बेचा के चरण ने।
0: हाँ चढ़ने बार गणो ये जमानो बार ही तो ठीक ही चिड़े भागे देखो क्या हुए।
1: अरे वो तो आधो तो देखो पाक गयो अबे जो यहाँ आधो और निकल जी।
0: हाँ निकल जी।
1: हड्डी बताओ
0: हड्डी।
1: हाँ
0: आठ पका को रीछ और मंगरा बिट्टे पूछ लो।
1: ते बताओ कहीं हुए?
0: ताकड़ी हुआ।
1: अरे वाह वाह तो नुई आड़ी धाकारी तो आज कहीं उड़ो
0: आज भिंडारी खड़े जानी मीठी मीठी बोल।

0: Raam Raam.
1: Ei, Raam Raam Jai, Raam Jai, Abronhão, Vidio, Coque, Nirgão, Vidio.
0: Não, mano, para o câmera, caca, gura, tumbum, tumbum.
1: Au, roubai, ganguiro, gura, baguan, das mil.
0: Sai, caram, caca, pessoal.
1: E me pane, que jogue, ô.
0: Me pane, aí, pane, caca, pessoal, tu, aí, pane, o pro, vado, manjuru, e pé.
1: Ei, gari, Raam Ji, gari, bahamur, lai, juju, bai, dek, bai, ki, gare, charu, meru, ue.
0: Sai.
1: Hey, Raam Ji, my nature, go, Raam Ji, Gary, or, but your Gurme, Privar, me, Hagle, Yan, you, Maribai.
0: See, Kaka, Sabrazi, Kusie.
1: Hey, then you pogam, Gay, Yoglake, Maribita.
0: Oh, Kaka, it's a way you like it. Look up, Pusu, you must see, it's a way you like it. Pom, Doro, Kana, like
1: it. Aja, hey, Bai, Daro, Guru, Boganda, you beat it, Haro.
0: Haro, Kaka, Pir, Ninde.
1: Oh, how, hey, Pamra, Haka, you're going to get it, eh?
0: काका काका तो को करंदी
1: ए तू तो वोनी करे
0: नहीं काका को करंदी
1: ए बाणे बाण जी गज्जा भाई
0: तीन बोणे आया तीन बोण के काका
1: ए बोणे बोण जी बड़े जी भाई ओ
0: तो पजे लिखे काका भगवान की दया है
1: अरे वाशिया ए काको एक सवाल करी उसका जुबा बनेगी कहीं भाई
0: हां बताओ काका
1: एक खड़ी थी एक पड़ी थी एक घना घन नाच रही थी
0: काका को आवे
1: ए लूनी भाई यो
2: काई को काका
1: ए भाई जो के जी हमको नहीं आउंदा तुमको आउंदा है गई
2: काका के हरो तो लेर बताओ जे गलत हो जे तो काका लड़े मत
1: ए ए जो हरो तो ले
2: काका रोटियां वे गई
1: ए रोटी हो जी ए भाई बीच बामणन जी मावे बाणे बाणी जी ने
2: हां से ए तो मत घूमबक रे एक सु लागे ही कह रे एक बजाता में पड़ी रे
1: आ सही है भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: हां लनी भाई राम राम
2: राम राम साहब राम राम साहब भाई जी यो
0: हां कौन करो लनी भाई थे तो फोन में भोना मैं तो होती थी कि मुझे को बोलनी फारी ये चीज गई लागे मने
2: अरे आज तो थाली भाषा तकड़ी मीठी लागे हमारी राजस्थानी बोली जकी अगली मीठी है हुणे जका नगला नहीं चोकी लागे
0: सही है
2: अरे आपा राठे रा गीत र भजन र किता तकड़ा है देखो तो करी मीठा किता है
0: केंदा मीठा लागे तो काम करता हो कहीं पहली आप गीत होना तो काम लगा था
2: सही है सा और मायार भयार काई करे थारे
0: काई करे भया भया तंदे लाकूड आया दो दो फुर रे एक नो कपनी मिठे दीन लिए होवे भाई अपन ने एक पट्टी लिखी है नोक लगी हमें
2: वाह सा वाह बधाई हो थाने राम जी आज काई होनो ला
0: आज तो विंदो नहीं होना दो
2: काका यो
1: आ बिजा
2: भाई जी के कुछ जान दो
1: ए ओइजा मारी बेटी

0: हेलो,
1: ए राम राम श्याम,
0: राम राम काकाजी, राम राम।
1: ए आप रो न्याव भिजो कोकेनेर गांव भिजो।
0: नाम मोहम्मद सिकंदर है, गांव उदास है।
1: आओ हो सिकंदर भाई, सलाम मुले के मो।
0: वालेकुम सलाम।
1: ए कोई काम दिन जा हुए हो?
0: काम न था काका जी, कोनी दिखे कोनी आंदा। हाँ,
1: अरे राम राम राम। अरे कोई बात नहीं, मन की आंखों से देखते हो?
0: हाँ, मन की आंखों देखा काका।
1: ए कई काम दिन जो करो थे?
0: काम नो की कौन करा काका, बैठे रहे वहाँ।
1: आज बैठे ही रहो, जो की बात ये भी रहो की दिक्कत नहीं है। आप जो है ना, मन को मत हराओ।
0: हाँ, मन को तो कौन हराओ काका, हिम्मत रखा।
1: हाँ हिम्मत रखो, देखो हिम्मत दे मर्दा है।
0: हाँ मदद दे खुदा।
1: हाँ मदद दे खुदा। आई बात जोरदार की। ए गांव में परिवार में सब क्या नहीं?
0: सब बढ़िया है काका, साजिद हो सब बढ़िया है, सब राजी है।
1: ए प्रोग्राम कैसे हो लागे थोने हो?
0: प्रोग्राम काका बहुत ही बढ़िया लागे, मतलब फोन उड़को लगाने वास्ते लागियो आ तो।
1: अरे वाह शवा। ए भाईयो।
0: हां।
1: ए जे थाने काम करो, थाने कोई परेशानी तो नहीं होती है?
0: नहीं परेशानी की कोनो, धर्म परेशानी की कोनो, बारो दवा परेशानी हुए।
1: आज कोई बात नहीं बेटा, वो जोड़ो हाउ जे जीरा को और हमारी पोती है उसको बोलो हेलो।
0: हेलो।
2: राम राम सर।
0: हां लुडू भाई, राम राम सर, राम राम सर।
2: और तबीयत पानी ठीक है?
0: बस बढ़िया है भाई।
2: एक आड़ी बताओ।
0: हां पूछो देखो, आज ना बताओ।
2: हां एड़ी किसी जगह है जटे नदी है पण पानी कोनी, शहर है पण घर कोनी।
0: आड़ी तो कोन्या भाई।
2: और था अताई करने कौन कौन आवे थार करने? हो
0: अताई कर, मारा दोस्त आ गया।

0: बढ़िया थारा दोस्त इतना चौका है थारा टाइम पास हो जाए तो कर लेवे।
1: टाइम पास हो जाए मरवा जाए।
0: थे फोन मत ही लगायो कहीं हो?
1: नहीं फोन तो मारी बेटी है बाहर पड़े बाहर लगा दियो।
0: अरे वास आवाज टाबरी है गणे थार क्यों करे रवा?
1: हां टाबरी क्यों करे था?
0: हां हां आंटी को अर्थ कोनी हो?
1: आंटी को अर्थ कोनी हो
0: काका थे बता दो कहीं हो?
2: हम भी हार गए भाई भी हार गया तुम जीत गया।
0: जना आज काका मने समोसा कचोरी दिलाना पड़ेला।
2: अरे जरूर दिलाऊंगा।
1: हां पक्का।
0: एक भाई जी का नहीं और आ गया है।
2: आए भाई जो धान खा लीजिए।
0: ओ काका वो तो नक्शो हुए नक्शेर मायने हुए देखो नदी हुए मांडुड़ी पण पानी कोन हुए शेर मांडड़ो हुए पण घर कोन हुए।
1: सही है सही है सही है।
0: आज कहीं उड़ोला भाई जी
1: पानी आ रही।

0: Hello, Kaka. Assalamu alaikum.
1: Hey, Mulikam Shilam Shai Abro Nyam Vijo Kokinir Gong Vijo.
0: Now to Kako Ivata, Kucherom Bolo.
1: I Kucherom Kun Bolo, but Ham you with Kako Pejan Labek, Bayo, Bon Matakun, but Buddha Pai Bija.
0: Nizamuddin Telly Bolesa.
1: Oh, Nizamuddin Bayo. Gangani may money get you.
0: Why do they go not the Gaga Messanta Udigam or Udi Cabot given him Memon of Dickens?
1: Are they Bushaba, Berishi, Berishi, Jarume, Mendu Deco, Hamjara Munio, him was a child made to guys a jockey Bursa do ye.
0: Third Zorgo, who shared the Ginagani.
1: Eker Yamji, Kari Yamji, Mad Nature Agor, but your program, Tani Gay Yoglakio.
0: Kaka program to both with your luck and Mara Hara Zagan, download Karaklanish room, they were now loan to check. एक लादू सिंह जी है कालू सिंह जी है राम सिंह रामदेव होकर एक फरीद दो बच्चा आलिया से साथ
1: अरे वाह जो का को एक सवाल करे उसका जवाब भी ना हो
0: बगो बगो देखा
1: एक पेड़ है यानी पग है
0: हां पग है
1: एक काली धोती
0: हां
1: ए हरदी में हरदम सोती
0: हां
1: ए गर्मी में छाया देउती ए बरसात में हरदम रोती काई होती है
0: सता वे
1: ए लुन के
2: हाँ काका
1: आई लोन की धारे मोदी भाई नीचे मोदी नाव जो है
2: काका बाजी था ना कितना साला हो रही है बस हो ही गया तो
1: आई बात तो सही
0: है उनकी
2: हाँ 15 साल सुनो
1: आई जो भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार
2: हाँ नमस्कार सर नमस्कार और की साग सब्जी बाप री कहीं कहता मैं
0: कंकेड़ा गणाई हुए बता देना
2: अरे कंकेड़ा तो काके ने कलडा अच्छा लागे
0: अरे कल आऊ ना गोर कंकेड़ा और काजरा और फलियां लाऊं दांगे
2: आओ आओ कंकेड़ा ला दीजो मारे तो काचरा हुए जन लाई जो खारा कंकेड़ा मन कौन भाव काके नहीं भावे एक गाड़ी बता दो
0: हां क्या होगा
2: 20 का सिर काट लिया ना मारिया ना खून किया तो काई करियो बताओ काका था बताई दो तो
1: हम भी जाऊं जे भाई को पहले हराया हमको हरा दिया भाई को हरा दिया हमने हाथ पकड़ का नख हुए
2: हाँ 20 आंगलिया का नख काट लिया पर देखो की नहीं यो आज कहीं हुनाला
0: पनी हारी
1: ए भाई कहीं के बेजा
2: भाई के पिनियारी हुनाए तो कहीं तो बादल पिनियारी बन पर माका ने आज और बरस जावे तो
1: ओ जा मारी बेजी

0: राम राम काका जी।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, अबरो न्याओ वीडियो को के निर्गांव वीडियो।
0: अजारी लाल पुरोहित, पंजाब से बोलो, हीरा वाली गाँव फाजिलका जिलो।
1: हो वजह की नहीं, मैं पानी कैसे आ गयो?
0: मैं आज ठीक है साहब, आज सुबह की जड़ी लाग रही है।
1: अरे वाह, हवन की जड़ी लागी और भी तो गर्मी परिवार में सब क्या नहीं हो?
0: खूब आनंद मस्त है, मंगल है, कृपा है प्रभु की।
1: ए प्रोग्राम कैसे हो लोगे धानी हो?
0: प्रोग्राम चोखो लगे जना दत्ती दूर हूँ खेच लियो थे मांगे में।
1: आओ जाब यार खाई करियो।
0: टाबरिया एक टाबरियो है नौकरी करे सा।
1: अरे
0: पोस्ट
1: ऑफिस में नौकरी करता भी नहीं, हाका करती है कहीं?
0: बस कोई करे ही माड़ा मोटा।
1: घर की लक्ष्मी और हाका नहीं करेगी तो कहीं करेगी?
0: करना ही भी चाहिए आई, तो
1: ऐसे ही अपना कीटाणु मर जाए।
0: नहीं अपना कीटाणु समय क्यों
1: आई सही कहा लूणी भाई हो
2: काका का।
1: ए फाजिल का पंजाब से भाई का।

0: कौन है, तुमसे बात करना चाहूँगा, बोलो। हेलो
1: हेलो,
2: राम राम लोनी भाई।
1: राम राम सर, राम राम सर, थाली काकाली आते हैं हुन हुन, मने तो हंसो ही हंसो आवे।
2: बस हंसन भी बनी है दुनिया, रोन भी कोई और वापा हंसन भी यहाँ।
1: सही है सर, थाली अनोखी आते हैं हुना से हंसो और आवे।
2: सूप सावर लोनी भाई, सब घरा तकड़ा है,
1: सब रेडी रेट है, ते तो एक गाड़ी बता दो।
2: हाँ जो
1: वे क्या होता है जिसके पैर नहीं होता है फिर भी चिढ़ता भी है उतरता भी है?
2: गुस्सा?
1: नहीं सर, मारो तो और अर्थ है।
2: बताओ देना ज्ञान उसी।
1: मैं तो कहूँ ताव है, ताव चढ़ जे, ताव उतर जे।
2: दोनों भी सही है, गुस्सा भी चढ़ा है उतरा है।
1: सही बात है सर।
2: ठीक है सर,
1: आज कहीं होने वाला
2: कोई जड़ी लाग रही है हमारा पंजाब में, सावन को कोई गीत सुनाओ खूब आनंद आड़ो।
1: काका आयो हजारी भाई जी के पंजाब, तो सावन कोई जान दो।
0: अयो जा मारी बेटी।

0: काका राम राम।
1: ए राम राम जाई, राम राम जाई, मीठा घना बोलो थोको नाम बीजो को किनेर गाँव बीजो।
0: नाम तुम्हारो कोमल है, गाँव खमर है।
1: ओ जैसे थान को नाम बेसु थानो भाई हुआ जे भाई जिन तो कोमल ही कोमल हो। ए भाई,
0: हाँ काका।
1: ए तू कहीं करी मन बता
0: की कौन करू काका, पढ़ाई करू।
1: ओ हो किती पड़ी थी मारी बेटा।
0: नमी पढ़ू काका।
1: ओ झोका पड़ो झोका लिखो माइटा कार भीवार का नाम ऊंचा करो बेटा।
0: हाँ काका।
1: ए भाई, ए माइटा रो केरो मान्यो हो।
0: हाँ काका।
1: अब काका तुमको एक सवाल करता जब करता उसका जवाब करना है।
0: हाँ काका।
1: ए बताओ, एक घंटे में कितना मिनट होता है?
0: 7 मिनट होता है।
1: आए लुंगे
2: काको काका।
1: आ भाई गोमल धारे को नहीं मन आवे दौड़े।
2: आओ आओ काका।
1: हेलो बोल भाई ने।
2: हेलो
0: हेलो।
2: राम राम भाई।
0: राम राम।

0: सर।
1: अब पढ़ाई ठीक चल रहा तो?
0: हाँ पढ़ाई तो ठीक चल रहा।
1: कहीं मार साहब के वे नवी में जकी हम आज आ नहीं पढ़ाई जन पर दसवीं में अटके ही नहीं।
0: हाँ
1: और अब खेती बाड़ी करूड़ी था के?
0: हाँ खेती बाड़ी तो है, बरसात को नहीं।
1: अरे बरसात हो जी निनान काट लियो कहीं?
0: हाँ काट लियो।
1: अरे बेला कितनी मोटी होगी?
0: बेला तो बलगी हुई।
1: अरे बड़ी कहीं है दोबारा बाई दन में घुड़ी आई बार
0: बावन।
1: आज कहीं हुनोला?
0: आज हिंडो खुआ जो हुना
1: काका आयो जी के इंडो ही खुवाई दो।
2: ए तू इंडो दे उन जा तू दे दे गीत रो मैं भेज दू।
1: हां ओए लो।

0: हाय मारी बजिया ओ जो भाइयों की बोयों की शिव की पिशिन का प्रोग्राम
1: हेलो गोरबन
0: ई प्रोग्राम में कोई भाई गीत बजने होना चाहता है तुम कहीं गेता हो
1: काका दी इतवार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तक नागौर आकाशवाणी फोन करना है।
0: अच्छा फोन करना है आया नीमिर बेटा मारी बेटा कोई नहीं जुड़ता है तो उसको कहीं मालूम पड़ेगा।
1: ए अबार बताऊं
0: है बताओ डावड़ी
1: मिंडी एको पांचो आटो दुओ
0: अहे
1: दुओ चको मिंडी एको छको आटो।
0: अरे वाह मारी बेटा जीवन दीदी ए भाई एक भैया का फोन है या सुमी की कुमी में हम ले नहीं सीखा तो उनका पाना भांजो बेटा।
1: ए काका देखो लिस्मन भाई है लीतरिया पाली हूँ अजमेरी गेट हुए इकबाल भाई कन्ना राम जी है गगवाना हूँ हरीश में गुआड़ा जालोर हूँ काका।
0: ए अगले दीदवार का फोन गिड़गिड़ी जो
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोणी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाई यो
1: काइको काका
0: अब बजो आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो किसका है
1: प्रतीक वर्मा
0: आज के प्रोग्राम के भजतूत कीटा
1: अशोक कुमार गोयल
0: उनके हाथ में वो क्या करते हैं देखो छता तान के बेचे हैं ए बिजोड़े भी है
1: आशी काका आना तो मेरे रिकॉर्ड है बाहर निकले अच्छे तो लिए घूमे
0: आशी क्यों जाओ तो अब हंजीस लगो मारे बीचा
1: ए स्वस्थ रहो हेलो गोरबन
0: होते रहो तो अब आप रे को के नेर हो गे
1: ए लून किने दिराओ सीख और करते हैं
0: रोम रोम शाई।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो गोरबंद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिक चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 हुए हैं, कुछ ही देर बाद हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Z. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंप कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन

0: का स्मरण किया।
1: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT ISM IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि CBI जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को CID ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से

0: भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह वर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिक चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए पंकज उदास के गए चंद गजलें। तो यह है कार्यक्रम की पहली पेशकश।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गाई कुछ चुनिंदा गजलें। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में सुनिए बॉबी फिल्म का गाना। गीत विठल भाई पटेल ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में कामचोर फिल्म का गाना, गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित है।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाप ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस का।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए। मधुबन

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।